रहम बारे लाउस दी एक मशहूर कहावत अनुसार सोने दा कर्जा मुड़िया जा सकता है पर रहम दिली दा कर्जा मरण तक नहीं उतारिया जा सकता। लेखक परमिंदर सोडी किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हरम रेडियो दे नाल।

0: साड़ी अमीर सभ्यता दीयां निशानियां। आप किसे जही ना नक चाड़नो रही ना।
1: ए अखाण उस पुरुष जां इस्त्री लई वर्तदे हन जेड़ा आप तां कोई चंगेरा कम ना करे परंतु दूजियां दे कीते कम्मां ते नुक्ताची नी करे।
0: मुहावे अते अखाण साड़ी अमीर सभ्यता दीयां निशानियां। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

0: वापर रहा है। हर देश विच हो रही भिन्न भिन्न गतिविधियां दी जानकारी मुहैया करवाएगा हरमन रेडियो। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो विदेशी बसदे पंजाबियां दी रूह नूं पंजाब दी मिट्टी नाल जोड़न दा उपराला कर रहा है हरमन रेडियो। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो, हरमन रेडियो, हरमन रेडियो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसीं।

0: दुखा भरिया दिल पैमाना छड़ परे की ये हस्ती दा मैं खाना छड़ परे के चल मुड़ चलिए इस सफर तो की लेना वीराने अगे वीराना छड़ परे दे के जान भी छुट जाइए ता चंगा है पर दे जीवन दा जुर्माना छड़ परे पर दे जीवन दा जुर्माना छड़ परे।
1: रीज पुगावांगे मन चाहे अति गीत सुनावांगे हर मन रेडियो जी।

0: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जो चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
1: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए।
2: जुगनू आपां पुठे पंगे बहुत कर ले। महकमे ते तवा बहुत ला लिया,
3: बहुत तवा ला लिया।
2: हुण आपां कुछ चंगा कम करिए।
3: की करिए?
2: चंगा कम कहण तो भावा भी आपां लीडर बन जाइए।
3: हां,
2: क्या देश दी जनता दी सेवा करिए।
3: कमाल दी गल है यार, लीडर ही चंगा कम है। रहण दे, जे लीडर बन गए जिंदगी जेड़े दो चार चंगे कम कीते ने ना उन्हां दा ही पोचा फिर जूगा।
2: ओ नहीं नहीं यार, राती मैनूं सपना आया।
3: किवें?
2: कि ऐसी ना आपां दोवें वोटां विच खड़े होए आं।
3: आपां नूं वोट कौण पाऊगा? पता घरदिआं नाल वी लड़े होए आं।
2: ओहो यार, लीडर है की दस।
3: हां,
2: भाषण देना हुंदा, पैसा तो कोई देना नहीं हुंदा।
3: यार सब तो वड्डी चीज हुंदी है भाषण, नूं आपां नूं देना नहीं आउंदा, आपां लीडर किवें बन जांगे यार?
2: ओ भाषण आपां दोवें दिया करांगे।
3: एक भाषण नूं दो जाने किवें दिया करांगे? मैं समझिया नहीं।
2: दोवें इदां कि अद्धी गल मैं शुरू करिया करूं ते अद्धी गल तूं पूरी कर दिया करी,
3: ते अद्धी गल भाषण दी तूं शुरू करेगा मैं पूरी करूं। रहण दे, मेरे मुंह चो कोई पुठी सिद्धी गल निकल जू लोग डांगा मानगे, मैं इह कम बिल्कुल नहीं करना यार।
2: नहीं नहीं, कुछ नहीं हुंदा, आपां रिहर्सल करके देखदे।
3: चलो ठीक है, रिहर्सल कर लैना मैं तेरे नाल। अद्धी गल तूं शुरू करेगा ते मैं पूरी करूंगा। जे मेरे मुंह चो कोई पुठी सिद्धी गल निकल गई तां तेरी जिम्मेवारी है, मेरी कोई जिम्मेवारी।
2: ठीक है,
3: चल ठीक है, शुरू कर।
2: करा शुरू?
3: हां कर।
2: मेरे भरावो
0: इत्थों जावो,
2: तू मेरे भाइयो
0: मेरी भरजाइयो,
2: तू मेरे वीरो
0: आलू चीरो,
2: ते मेरी भैनो
0: ते एदी भैनो।
2: सानू पता लगे के साडी विरोधी पार्टी ने रैली विच कठ वधाउण वास्ते 100-100 चमचे इकट्ठे होया, पर सानू इना चमचियां दी लोड़ नहीं,
3: क्योंकि साडी रैली च पहले ही बड़े नंग ते मलंग इकट्ठे होए आ।
2: साडे देश नूं तरक्की दी लोड़ है,
3: बिल्कुल लोड़ है।
2: असीं कईआं पिंडां विच गए आ, जाके देखिया के पिंडां विच स्कूल ही नहीं है,
3: जिथे हैगे उथे पढ़ाई दा कोई रूल ही नहीं है।
2: कईआं पिंडां विच स्कूल हैगे आ,
3: अच्छा,
2: पर उथे बच्चिआं दे बैठण वास्ते फर्नीचर नहीं हुंदा,
3: बच्चिआं ने बह के समाधी लाउणी है जदों पढ़ाउण वास्ते कोई टीचर नहीं हुंदा।
2: पिछे जे अखबार खबर आई सी,
3: केड़ी?
2: तुसी पढ़ी होनी है।
3: केड़ी खबर?
2: के बिजली महकमे दे कुछ मुलाजम वड्डे अफसरां नाल मिलके एक पिंड तो दूए पिंड तक जांदी 4-5 किलो खंभिआं तो तार वेच के खा गए।
3: खंभिआं तो तार वेच के खा गए? खंभे ओवें जिवें खड़े ने। किन्नी शर्म दी गल है यार,
2: बेहद शर्म दी गल है। जे किते साडी सरकार हुंदी
3: तां असीं सने खंभे खांदे यार।
2: इक आम जी गल है,
3: केड़ी?
2: के था था नी पत्थर गड्ढे तुसी देखे होने आ।
3: हां हां,
2: नी पत्थर गड्ढे पए ने, उनां नूं कोई पुछदा नहीं, सरकारां टुट जांदियां ने।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: असीं तुहाडे नाल वादा करदे आ।
3: हां जी,
2: जे किते साडी सरकार आ गई तां असीं नी पत्थर रखांगे वी,
3: ते अपनी सरकार टुटण तों बाद अपने पट के लै जांगे, सरकार दी निशानी नहीं छड्डनी।
2: नी पत्थरां दी गल छड्डो, साडे पंजाब दे शमशान घाटां दा वी बहुत बुरा हाल है।
3: तूं गया उत्थे?
2: हां।
3: फिर वापस किवें आ गया?
2: यार मुर्दा फूकण गया सी।
3: अच्छा अच्छा, मैं सोचा किते भूत
2: ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ।
3: ਕੀ ਗੱਲ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ?
2: ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ?
3: ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ। ਹਾਂ,
2: ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 5-5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ।
3: ਅੱਛਾ,
2: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਫੂਕਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
3: ਮਤਲਬ ਮੁਰਦਾ ਫੂਕਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ 5-5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ?
2: ਹਾਂ,
3: ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ।
2: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
3: ਬਿਲਕੁਲ,
2: ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ
3: ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਯਾਰ।
2: ਬਾਕੀ नशे साडे देश नूं खोखला कर रहे हैं।
3: बिल्कुल,
2: खास तौर ते शराब।
3: शराब
2: असी शराब दे सख्त खिलाफ हां,
3: बहुत ज्यादा खिलाफ हां।
2: शराब ते पाबंदी वास्ते असी अज दी सरकार नाल दिन रात लड़दे हां,
3: ताइयों इन्नी उच्ची बोलदे हां, पौआ पी के स्टेज ते चढ़दे हां।
2: एक होर बहुत वड्डी समस्या,
3: केड़ी?
2: वधदी आबादी।
3: बिल्कुल,
2: वधदी जनसंख्या
3: बहुत ज्यादा,
2: जेड़ी दिनों दिन वधदी जांदी है
3: बहुत तेज रफ्तारी नाल।
2: असीं तुहाडे नाल वादा करदे हां,
3: बिल्कुल,
2: जे तुसीं आज की सानू वोटां पा दिओ,
3: मोहरां ला दिओ,
2: कुर्सी ते बिठा दिओ,
3: असेंबली च बचा दिओ,
2: तां असीं एक साल दे अंदर अंदर आ जनसंख्या अद्धी कर देंगे,
3: भावें दवाई छिड़क के बंदे मारने पैण।
4: हार्मन रेडियो 24/7। जो व्यक्ति अपने आप ते शंका करदा है, ओ उस व्यक्ति वांग है जो अपने दुश्मना दी जमात विच शामिल हो गया होवे, ते जिसने अपने ही खिलाफ हथियार चुक लै हों। विचार अलेक्जेंडर डूमा। अजिहे खूबसूरत विचारां संग आवाज दी परवाज सुनदे रहो हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया। दिल पंजाबी, जज्बा पंजाबी।

0: आओ सुनावा अखाण सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा, तू पाई ते मैं बुझी, काणी अखना रहंदी गुजी।
1: जद कोई चलाकी परियां गल्लां करदा होवे ते ओनू दसना होवे कि तेरी चलाकी समझ गए हां, तां ए अखाण वरतदे हन।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले, पंजाबी बोले। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया।

0: मैं हाँ अमरपाल सिंह कुड्डा ते तुसी सुन रहे हो हर मुक्ति हो फिर पंजाबी कस्बा पंजाब
1: भाई पाइया दे दर्दी हुंदे ते भाई पाइया दियां बावां चढ़दी कला भाइया नाल रहंदी

0: सत श्री अकाल जी। ए हरमन रेडियो है अते हरमन रेडियो दा तीसरा पड़ा चल रहा है। सन 2000 विच आस्ट्रेलिया दे सिक्की दे तुरे पिंड बुलगुलगा तो 2 घंटे दे प्रोग्राम दी शुरुआत हुई सी। सन 2005 तो लैके 8 तक सिडनी अते मेलबर्न दे विच FM दे साइड बैंड ते हैरिस पार्क स्टूडियो पैरामेटा तो हरमन रेडियो चलिया। सन 2011 विच हरमन रेडियो नू पंजाबी हिंदी दी पहली ऐप राही आईफोन ते एंड्रॉयड ते लांच करके वर्ल्ड वाइड हो गया। जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी

0: अपनी बिजनेस दी तरक्की ले तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस दी एड देन ले जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो।

नमस्कार, मैं हूँ सनी देओल और आप लोग सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का नंबर वन पंजाबी स्टेशन हामन रेडियो। सुनते रहिए क्योंकि मेरे पापा भी सुनते रहते हैं। थैंक यू।

मैं हाँ अमनदीप सिंह सिद्धू, डायरेक्टर हरमन रेडियो। दुनिया के हर कोने तो पंजाबी साड़े नाल जुड़ते हैं, आला दर्जे की पेशकारी का आनंद माणते हैं। हरमन रेडियो दे आस्ट्रेलिया तो सारे प्रजेंटर मुफ्त सेवा निभाते हैं। तुसी भी साड़ी मदद कर सकते हो, सानू वधिया वधिया जानकारियां भेजो, अपनिया आईफोन एंड्रॉयड दी एप्लीकेशंस एप स्टोर तो डाउनलोड करके उस विच सानू सुनो। तुहानू रेडियो दे नाल अखबार, पॉडकास्ट,

सेहत बारे रूस वाले कहंदे हन कि जेड़ा अपने डाक्टर नू अपना वारस बनांदा है ओ मूर्ख हुंदा है। सुने विचारां दे

हर किसी विच सच बोलन दी हिम्मत नहीं हुंदी, उवें ही हर किसी दे विच सच सुनन दी भी हिम्मत नहीं हुंदी। सोने विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: सुनावा खान सियाणिया दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा,
1: अन्ना मारे अन्नी नू, कसुन वजे थम्मी नू। जदों कोई बंदा अपनी समर्था तो बाहरा कम करदा है उदों ए अखाण वर्तदे हन।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

हरमन रेडियो सुन वाले तमाम श्रोतिया नु मेरे वालों यानी के साबरकोटी वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। ते दोस्तो पंजाबी बोली और पंजाबियत दा पहरेदार ए हरमन रेडियो जिस नु इस टाइम तुसी सुन रहे हो, मेरी गुजारिश है सब सुन वाले नु सब श्रोतिया नु जिन्ने भी पंजाबी नु प्यार करन वाले ने जिन्ने भी पंजाबी दे मोहब्बत करन वाले ने इस रेडियो नु वध तों वध सुनो तां कि साडी पंजाबी दा होर प्रसार वध सके, साडा पंजाबी म्यूजिक दुनिया के कोने कोने में पहुंचे।

इतिहास बारे इटली दी कहावत है कि इतिहास जदों भी अपने आप नूं दोहरांदा है तां मनुखता नूं इस दी कीमत होर भी ज्यादा चुकानी पैंदी है।

0: रोटी हजम नहीं होंगी। वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल्स का गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट कैमिकल की वरतों वाली कणक जेडी के सीधी खेतों चो मिल च लाई जाती। ऑस्ट्रेलिया का बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डू वाली स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसरों की दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्ट हैं। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन .com.au या फोन करो 0428895564।
1: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। ओ आजो आजो ताया जी, वेलकम। ताया अज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथो किथों मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपा ले आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा, सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे, धार्मिक फोटवां, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A 130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 0404-000-536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू।

कुलदीप मानक, मोहम्मद सदीक, रणजीत कौर, मोहम्मद रफी, शिंदा, दिलशाद अते होर चोटी दे पंजाबी गायकां दे हिट गीत रोज दुपहरे 12 तो 1 बजे सिडनी समय अनुसार हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया ते। अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा टॉप गीत।

0: संकट के दोप में फंसो।
1: चट्टा के मुंडे साढ़े नाल है, चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
2: थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए।
3: ताही ता मैं हुण आई आ बी पुछ के ता आवा बी ऐतकी चंकाटे च की कुछ पाना है।
4: पाना की आ तू मैं ते बाला बाकी मिर्च मसाला।
3: फिर भी तफसील नाल दसो।
4: ले तफसील ना सुन ला। हासे दियां लाउणियां झड़ियां ने, कुछ सच्चियां ने, कुछ घड़ियां ने, कुछ मिठियां ने, कुछ खरियां ने, कुछ इधरों उधरों फड़ियां ने, कुछ बातां वतनों पार दियां, कुछ गुस्से दियां, कुछ प्यार दियां, कुछ अंदर दियां, कुछ बाहर दियां, कुछ गल्लां मेरी सरकार दियां।
3: चाचा जी हसण वाले थोड़े ने पर बहुते थोतो सड़ने, सो सोच समझ के पंगा लियो, पैणे हर जाने पर ने।
4: ओए जद उखली विच सिर दे देता फिर मोलियां तो की डरने। चतरे ने विच छणकाटे दे ऐतकी गिण

0: जड़ते कोके कोके कोके कोके
1: सच चाचा जी शर्मा जी किथे ने
2: जिदा दे मेहमान ओदा दे मेजबान मेरे आउन तो पहला दा बाथरूम च नहा रहा पता नहीं केड़े जन्म जन्म दी मैल ला रहा
1: कोई खड़का भी नहीं हो रहा
2: ओए खड़का ता होवे जे गिरया होवे नाले सुख नाल शहरियां दे शावर आले बाथरूम भी इन्ने भीड़े भीड़े हुंदे आ जे बंदा तिलक के गिर भी जावे फिर भी खड़े दा खड़ा ही रहिंदा
3: चाचा जी सत श्री अकाल
1: हां शर्मा जी कल्ला टॉवल बन के ही आ गए
4: सॉरी सॉरी सॉरी नीलू जी मैं हुणे कपड़े पा के आया हुणे
2: वाह रे तकदीरे बीजियां भिंडियां ते उग पे घीए ओए बंदा घर च कल्ला के रहना नहीं चाहिदा धीआं पैणा जरूर चाहीदियां नहीं तां सारी उम्र बंदा वेड़े च कच्छा पा के ही गेड़े कढ़दा रहिंदा
1: मेनू लगदा शर्मा जी नूं पता नहीं लग्या होना कि मैं आई होईयां ताई तक कल्ला टॉवल बन के आ गए
2: ओए तू शुक्र कर अज तां टॉवल बनया पिछले हफ्ते नूं देखण वाले आ गए ए प्यो दा पोता जंगू नहाउण गया डूढ़ घंटा गुसलखाने चों ना निकलिया ओह अक के बाथरूम दा दरवाजा खड़का के कहिंदे काका जी असीं तां चले आ ए डर गया किते कुड़ी वाले मुड़ ना जाण पतंदर उहनां सामने उदां ही निकलिया ओह अखां ते हथ रख के खड़ गए कहिंदे बशर्मा फेर आई पहलां अंदरों जाके कुछ पाया ए अंदर गया इहनूं होर तां कोई लभिया नहीं काली काली चप्पल पा आया
3: नीलू जी हासे ते पैर आ गया जिहड़ा हासे ते हासा चढ़िया लगदा चाचे ने अज कोई नवा टोटका करिया
2: ओए ए तां कमली आ हुणे लोट पोट होई जांदी आ अजे तां चाचे ने पहला कोका चढ़िया
3: लगदा मेरी पिठ पिछे मेरे ते जड़ता
2: पिठ पिछे की आपां मुंह ते जड़ दिंदे आ ऐ दस किन्ने भरा हो
3: सत
2: आ छे बेच के एक भैण ही लै लो नाले घर च रहन सहन दा सलीका आजू तू भी तां रखड़ी वाले दिन कंधा कोलियां च वजदे फिरदे हुंदे हो
1: चाचा जी गल तां थोड़ी बिलकुल सही है
2: गलत कदों हुंदी है
5: सुनो ते सुनाओ अर्बन रेडियो
6: किसी इंसान ने किन्नी खूबसूरत गल कही है मैं तेनू इस लई सलाह नहीं दे रहा क्योंकि मैं तेरे तो ज्यादा समझदार हाँ बल्कि ये सलाह मैं इसलिए दे रहा हाँ क्योंकि मैं जिंदगी च तेरे नालों ज्यादा गलतियां कीतियां ने

0: जद भी चाहो सुनो हिट गीत हरमन रेडियो है तुहाडी सेवा विच पुराने गीतां दी मिठास नवे गीतां दी धुन हरमन रेडियो हिट गीतां दी मशीन।
1: सत श्री अकाल दोस्तो, मैं गगन मसौन हुण हरमन रेडियो ते अपनी आवाज विच पंजाबी दीआं प्रसिद्ध कहानियां कवितावां अते विचार लैके हाजिर हुंदा हां। मेरिया होर वधेरे रचनावां सुनन अते फीडबैक देण लई मेरा यूट्यूब चैनल पंजाबी क्रिएशंस सबसक्राइब करना ना भुलना।

इंसान मकान बदल दे, कपड़े बदल दे, दोस्त बदल दे, संबंध भी बदल दे, फिर भी दुखी रहिंदा है क्योंकि अपना सुभाग कदे नहीं बदलता। चंगे विचारां नाल सुनदे रहो हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया, दिल पंजाबी, जज्बा पंजाबी।

0: मैं थोड़ा अपना फतेह शेर गिल, तुसी सुन रहे हो हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।
1: कुलदीप मानक, मोहम्मद सदीक, रणजीत कौर, मोहम्मद रफी, शिंदा, दिलशाद अते होर चोटी दे पंजाबी गायकां दे हिट गीत रोज दोपहरे 12 तो 1 बजे सिडनी समय अनुसार हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ते। अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी

0: इस उम्र सानू केड़ा हमदम मिल गया।
1: भगवान ने मैं उस हमदम नहीं गल करता, मैं करता हरमन रेडियो दी।
0: हरमन रेडियो?
1: हरमन रेडियो जेड़ा 24 घंटे चलता, आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो।

0: ओ आजो आजो ताया जी वेलकम। ताया आज रात साडे कोल ही रहना बहुत थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथो किथो मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपां ले आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा। सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे, धार्मिक फोटोआं, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन ही दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा। ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामण दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A 130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। अकाल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
1: रोटी हजम नहीं हुंदी, वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिलदा गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी के सीधी खेतां चो मिल च लई जांदी। ऑस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डूआं लई स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो garewalgoldengrain.com.au या फोन करो 0428895564।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ।
1: ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਚਨਾ ਦਾਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇ ਬਾਦਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਜਿਟ ਕਰੋ garewalgoldengrain.com.au ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ 0428895564।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ। Harman Radio.

0: क्विंटेसेंस प्रोडक्शन।
1: इस विदेशी ग्लैमर ने अपने देश भी किड्डी चेंज लिया दी
2: ते होर जिथे कुत्ते बदल गए ने उथे इंसाना दा बदलना ते बड़ी मामूली जी गल। द्रौपदी का चीर हरण होन लगा सी ते उहदे मुंहों सिर्फ इना ही निकलिया सी हे भगवान। ता भगवान कृष्ण ने उहदी इज्जत नहीं सी उतरन दित्ती। हुण ते कुड़ियां ऐदा खुल के गाणियां च उतरदियां भगवान दे मुंहों भी इहो निकलदा हे भगवान। हुण ते भगवान भी हथ खड़े कर गया भी किन्नियां क साड़ियां लियाई जावा इह ते आप दुर्योधना नूं चंबलाउण डईआं ने।
1: ना फिल्मां दा तां बेड़ा ही कर गया कुके।
2: साडे मां प्यो नूं चा हुंदा सी भी अपने बच्चियां नूं आह फिल्म विखा के लियाईए ओह फिल्म विखा के लियाईए ते हुण भरावा अजकल दे मां प्यो दी जान ही सुक्की रहिंदी होवे बच्चे किते आह फिल्म ना वेख लैण बच्चे किते ओह फिल्म ना वेख लैण।
3: रेडियो 24/7
4: तेरे रूप दा मैं बणी दस पैरा तू नाग।

रोजाना दोपहरे सिवनी समय 1 to 2 बजे तक असी सुनांगे खबरां अज दा इतिहास हासरस कमेडी अते टॉप गीत माणो आनंद।

0: के धूप में हंसो।
1: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है के चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
2: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए।
1: रुक दे फट्टा।
3: ओ शांति ए तू बाहर लिया जी की गल कर दी है। मेनू तो एक दिन मेरे घर वाली ने बड़ा ठठ किया।
4: ना उनू की हो गया?
3: ओ थोड़े दिन पहला किते सारे मेंबर पंचायत काबी किते जेड़े होर लखीना च खड़े पांच चार विधायक कठे होके मेरे घरे आ गए। ड्यूटियां ड्यूटियां लाउणियां सी।
4: अच्छा।
3: ओ मैं घर वाले नु कहा, मैं कहा भागवान ने अज मेरी बेइज्जती ना करा दे माड़े मोटे लीड़े चज हाल दे पाली।
4: आहो
3: शांति ए बैठिया गल बात अजे चलदी सी, चाह चू पींदे सी। चलो बाथरूम च बड़ गई। मैं कहा भाई चल सोना नहाण लगी है भाई चल। मैनू कहंदे जी सुनदे हो बूटी वाली सलवार बनायो मेनू। मैं कहा चल भी अज लीड़े लूड़े निखर के आओ। ते थोड़ी देर बाद फिर आवाज मारी, कहंदी जी आ सुनियो दंदा ते फेर नाला बुरश दियो था मेनू। मैं संत की पेस्ट पूस्ट ला के दिती। मैं कहा भाई अज ता बुरश वर्श करके मैं कहा भाई पर भूम वगैरा बाहर ला के निकल। बस दो मिनट बाद संत जद दाड़ देने लत बजी ना बाथरूम आले दरवाजे च। मैं कहा ला भी कम हो गया लगता। मैं हजे उधर नु आउण ही लग्या सी भगा के मेरे गिट्टां च बुरश मारे।
4: अच्छा।
3: मैं कहा की गल होगी बुरश कीता नी?
4: की कहंदी?
3: कहंदी बुरश मैं करन वास्ते नहीं सी लिया तेतो, मैं तो बूटी वाली सलवार च आपदा नाला पाना सी।
5: हसण दा समा है हरमन रेडियो ते हासियां दी बारिश।

0: तेरिया आदतां भी पतंदरा बदलियां ने
1: ओ काका आदतां भी कदी बदलदियां ने ए भी तेरी पूछ वांगू बंदे दे नाल ही रहनी है।
0: अच्छा
1: ले आदतां दी सुन ले
0: सुना
1: तेनू पता पिछे जे अपने पिंड वाला तेजू
0: अच्छा
1: उहना दा बुढ़ा मर गया
0: अच्छा
1: उत्थे बड़े बंदे अफसोस करन आए कई महकमे दे बंदे अफसोस करन आए
0: अच्छा
1: हर बंदे ने अपने अपने ढंग नाल अफसोस कीता है।
0: अच्छा
1: जिहो जिहा बंदा जिहो जिहा काम करदा है उसे ढंग नाल अफसोस कीता है ते सब तो पहला बिजली महकमे वाले आए
0: अच्छा
1: उन्हां ने अफसोस पता किदां कीता
0: किदां कीता
1: आउंदे पता की कहंदे सौ लगे यार तेजू मैनू ता सुन के झटका जा लगा जदों मैनू पता लगा ताडा बड़ा फ्यूज हो गया मैं की गल हुई खंभे दियां तारां वांगू टलाया सी नाले यार ओदा भी जदों बंदा मर गया सियाणा हो जांदा ना ओदियां तारां सिद्धियां परमात्मा नाल जुड़ जांदियां ते फिर जिहड़ी बंदे दी आत्मा मीटर दी रीडिंग प्लेट वांगू चक्कर कढ़दी रहिंदी है तैनू यार पता भी बंदे दा कनैक्शन रब दे हत्थ विच है की पता किहड़े वेले किहड़ा सुच कढ़ देना। चलो हुण घबराओ ना हौसला रखो एवें रो रो के खंभे वांगू डिगी ना जाओ। उस तो बाद आ गई कितने ड्राइवर भरावां दी वारी
0: उन्होंने मंत्री साहब किवें अफसोस कीता
1: उन्होंने अपने ढंग नाल अफसोस कीता ड्राइवर भरा आउंदे पता की कहिंदे
0: की कहिंदे
1: सौ लगे यार तेजू मैनू स्टेयरिंग दी जदों मैनू पता लगा यार तुहाडे बुढ़े दा इंजन जाम हो गया मेरियां अखां च तां पानी तेल दी टैंकी वांगू चोण लग पिया सच्ची यार बुढ़े दे जाण दे नाल घर दा सारा ही चक्का जाम हो गया यार सारे जाने ओहदे कोल ते चुंगी वालियां कोल माड़ा मोटा डरदे सी नाले मौत दा ते डीटीओ दा की पता किथे नाका ला के खड़े होवे। ओ बंदे नूं तां दिल दी ब्रेक दा ख्याल रखना चाहिदा है एदू पहलां जाके धर्मराज दे विच वजे एदू चंगा भी थोड़ा बहुत डिपर दे के रखे। चलो हुण रोवो ना चारे भरा एक दूजे नूं धक्का ला के टाइम पास करो। उस तो बाद आ गई कितें पुलिस वालियां दी वारी
0: ओ यार उन्होंने अफसोस किस तरह किया
1: उन्होंने फिर अपने ढंग नाल ही करना सी आउंदा ही अफसोस करन लग पे।
0: अच्छा
1: एक पैर दरवाजे तो बाहर एक पैर दरवाजे दे अंदर
0: अच्छा
1: आउंदे अफसोस पता किदा करके गए
0: किदा करके गए
2: ओ की गल होगी बुढ़ा मारता ओए आ मैं कहना सिद्धे हो गए अफसोस कर लो नहीं तो मैं लम्मे पा लेने आ। वैसे यार होया माड़ा ओदा भी जदों दा माड़ा माड़ा बीमार रहने लगा सी चलान तां उहदा उदों ही कट हो गया सी ओ बंदा तां मैं हौसले नाल तुरा फिरदा जमदूतां दा की पता किथे नाका ला के खड़े हो उन्हां ने थोड़ा मनना भी लै दे के बंदा छड़ दिए। चलो यार उदा रब माड़ी मोटी सजा दे दिंदा पर आ जिहड़ी धारा 302 लाती बहुत माड़ा कीता वैसे बंदा बड़ा चंगा सी होमगार्डियां वांगू किसे दे मूहरे बोलदा तां है ही नहीं सी। चलो चंगा फिर इदां करो चार बंदे लैके थाने आ जाओ जे माड़ा मोटा रोना पैदा रोला गे।
3: मेरे वीरो भैनो बच्चियो बुजुर्गो ते भाभीओ देशां विदेशां च बसदे सारे पंजाबीओ प्यारे पेंडू शहरी शादीशुदा छड़े ते कुआरियो झगड़े छड्ड के दो मिनट हसो
4: जट्टा के मुंडे साडे नाल है जे चंडा गाड़ के बदमाशी करना हैगा
5: थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए
4: रुक दे फट्टा
6: नमस्कार 343.6 मीटर यानी 702 किलो हर्ट्ज तो रेडियो पंजाब तुहाडा स्वागत करदा है। तुहाडी सेवा विच प्रोग्राम लेके हाजिर होया कम पहला वाले चंगे से और साडे इस प्रोग्राम दे विच हसगुल्ला जी आए हुए ने ओ तुहानू दसणगे कि कम पहला वाले किवें चंगे से। हसगुल्ला जी तुहाडा साडे स्टूडियो विच आण दा बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुहाडे को पुछना चाहना कि हुण दे व्याहां च ते पहले व्याहां च की तब्दीली
7: ओ चंडो जी रहंदे हो रहंदे हो
6: इत्थे फिर कट्टा लैण आए
7: ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਲੱਗੇ ਜਿੰਦੇ ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਗਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਨਾ ਡੀਜੇ ਦੇ ਉਦੋਂ ਪੰਗੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਸੀ।
6: ਹਸਗੁੱਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।
7: ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਾਈਫਲ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੰਡੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਵੇਲਾ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਸੀ।
6: ਹਸਗੁੱਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਹਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਕੀ ਸਾਸ ਵੀ ਕਭੀ ਬਹੁ ਥੀ ਕਸੋਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ।
7: ਮੈਨੂੰ ਪੰਗੇ ਜੀ ਪਾ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਿਵੇਂ ਆਣਾ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਸੋਫੇ ਮੱਲੇ ਨੇ ਪਤੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਘੱਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੰਦੇ ਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਗਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲੇ।
6: ਹਸਕੁੱਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ?
7: 70 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਬੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਂਟੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ, ਨਿੱਤ ਬੋਬੀ ਘੱਟ ਕਟਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੰਬੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ।
6: ਹਸਕੁੱਲਾ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ?
7: ਸੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਘੜੀਸੀ ਜਾਇਓ। ਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਿਰਲਾ ਰਾਗੀ ਸੀ, 12 ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਢਾਡੀ ਸੀ, ਨਾ ਚੈਨਲ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੇ ਨੰਗੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਸੀ।
8: ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ, ਦਿਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਜ਼ਬਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ।

रेडियो दिल पंजाबी जज्बा पंजाबी पंजाबी।

0: सही हाथे चारे पासे कॉमेडी आवत
1: मर्जा भाई पाली घरे है नी जी आओ किधर तुरी आउंदी है उस दिया तो भट दिया गाटा नी पाली ने पाल गया और आज पाली कितो आई नी दस बज कितो आई है नी बेबे के लग गई मैं पूछ दी कितो आई है
2: मैं आई हूं
1: हट तो आई है तू हट तो तू गंडे रह गई सा तू सीधा आई क्यों कहंदी भी तगड़े नु मैं कह पतंदर नु आ दे नु
2: केड़ा तगड़ा
1: अच्छा हुन केड़ा तगड़ा होगा तू मैं नहीं दसदी तेरे बर्जन तेरे
2: नीचे मार दी है
1: हो जा तू आ जा अरे हो जा तू अरे हो जा तू
2: मार दी है
1: आ जा जल्दी ना जा दे नी मैनु एने कितो जोगी नहीं छटा तू हुन जाने दी अस्तो मिलन तू
2: जाएगी तू लाला दी ना मर्जी जोर जे ब्याह कराऊंगी ना नेक मर्डर वाले ना कराऊंगी नी मर जूंगा
1: छट्टा फुक्का से भी बचकर रहने
2: मार दिया क्यों मार दिया
1: नी मैं की करया चतरो मैनु एने कितो जोगी नहीं छटे
2: गल की है
1: गल जरा हैगा ना नंग मलंग जा हो नेक मटरा वाला फुकड़ा वो पतंदर नु जाके मिलती है कोई नी क्यों
2: जेगी कोई बच्चे
1: तेरा बेड़ा भाई भरावा पिट गए तू मैनु एडा वड्डा ताना मार गया चतरो है
2: तेरे
1: पैर
3: हरमन रेडियो 24 घंटे सत्य।

0: हरमन रेडियो
1: 24 घंटे 7 दिन।
2: जे तुसी अपने पैसे गिन सकते हो ता तुसी सच्ची मुच्ची दे अमीर नहीं हो। विचार जीन पाल गेटी, चंगे अते सच्चे विचारां ले जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: हारमन रेडियो
1: 24/7।
2: युद्ध बारे सियाने कहंदे हन कि युद्ध नाल मसले हल नहीं हुंदे, चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

चुप बारे सियाणे कहिंदे हन कि चुप दा असर उच्ची आवाज कड्डियां गाल नालों ज्यादा हुंदा है। विद्या विचारी तां पर उपकारी। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

चल चलिए एक दुनिया बनाइए विच होण खुशियां दे रंग, गल्लां करिए दिल वालियां, भाईचारे दे संग। सोच परवाज नवा आगाज ते दिल मिलियां दे साज, सुनिए सुनाइए सांझी एक आवाज। ऑस्ट्रेलिया दा 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाला पहला पंजाबी रेडियो ट्रूली यू आर।

0: हरमन रेडियो कमाल बा कमाल।
1: विचारन दी गल है कि क्रिकेट दे लई लोग पागल हो जांदे ने, पर जदों धार्मिक स्थान दी लाइन थोड़ी लंबी हो जावे तां लोग तंग आ जांदे ने। विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

0: ओ यार वो अपना बस वाला ड्राइवर आ गया कि नहीं बस लेके
1: ओ गोगी हां भाई ओ यार देख जरा कोट पैंट मेरा यार दी ब्राच चाहना ठीक लगदा
2: जाने बाजाने की
1: चढ़ाई है पूरी मामा
3: तो लंबाई नहीं पैजा क्रेजी
2: ओ अपने फत्तू हां भाई ओ तू अपनी पग जी लोट करदा ही नहीं छेती कर यार ते कार वाले भी आके खड़े है अच्छा ब्यौला किथे अपना ओए ब्यौले जी की पूछदा ओ तो फुल वाली कार कोल खड़ा भाभी तो शर्मा पौंदा रच के पैसा घोड़ी मेरी प्यार भाभी खड़े बराती

तर्क ते वितर्क दियां काफी कहावतां ने। अर्मीनिया वाले कहंदे ने बिल्ली नू मीट खाण नू ना मिले तां उह कहंदी है अज मंगलवार। उधर पछमी अफरीका वाले कहंदे ने मच्छी चुंझ चो फिसल गई तां बंगला कहण लग पैंदा है मैनू तां मच्छी वैसे ही पसंद नहीं। किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे धर्मिंदर सोढी सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

जाते जाते एक गल सुन दी जा लाके कदे आस किसे खास ते ना बैठी जड़ा लंघ गया वेला इतिहास ते ना बैठी मुक जाना मैं सुख जाना मैं फूल जया लेके

0: हरमा रेडियो ऑस्ट्रेलिया
1: 24 घंटे 7 दिन
2: वाहुंदिया दी जोग गई ते चोबरां दे जम पई।
3: जद कोई जना मेहनत कर करके खपदा रहे पर उस दे हथ कुछ भी ना आवे अते वहलड़ नू मिल जावे ता ए अखाण कहंदे हन।

0: सुनोते सुनाओ अर्बन रेडियो।
1: मुस्कुराहट बारे अफ्रीका दी एक कहावत है, दो बंदियां दी घट्टो घट दूरी नू मुस्कुराहट कहा जाता है। लेखक परमिंदर सोडी, किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे, चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।
2: Private jets for the crew. Dubai, what it do? Yes.

खूबसूरत आवाज दा सफर हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया मुड़ हाजिर होने एक छोटे जे वक्फे तो बाद सुनते रहो आवाज दी खूबसूरत परवाज हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सेंड अस मैसेज ऑन info@harmanradio.com.

0: आज आज ताया जी वेलकम। ताया अज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथो किथों मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर इथो मिलदा। सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब इथों मिलू। मंजे, धार्मिक फोटोआं, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ इथों मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन ही दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामण दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A 130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। कॉल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
1: रोटी हजम नहीं हुंदी, वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिलता गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी के सीधी खेतां चो मिल च लई जांदी। आस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डुआं लई स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो garewalgoldengrain.com.au या फोन करो 0428895564।
2: अपनी बिजनेस की तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
3: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो। हरमन रेडियो
4: 24 घंटे 24 घंटे 7 दिन। हरमन रेडियो मुआफी चाहुंदे हां कि अज असी इस घंटे दा खबरां दा बुलेटिन तकनीकी कारना करके पेश नहीं कर सके। आस्ट्रेलिया आ गए ईस्टर दे क्रिसमस जोगे ही रह गए। आपने त्योहारां नूं वी याद रखो, सुनो हरमन रेडियो नूं ते जुड़ो अपने विरसे नाल।

आओ शेर बगियो आजो आजो ताया जी लंगे लंगे आगे पुत आगे भाई भाई आजो आजो जी और सुनाओ सेता ठीक ने सेता नु पुत मैं केड़ा अस्पताल आया करो ही आया करे सेता ठीक ने करे सेता नंबर नौ करे कि आप केड़ा बंब चल दे ओ ताया जी घर दे विच भी बंदा ठीक कई बार नहीं भी रहिंदा बस जी तेरे ना मुंह कोई अज की गल निकली बंदा कहिंदा भी ताया घर दे विच ते बंदा ठीक रहिंदा हो बाहर पवां ठीक करे सेहतां ठीक ने करे सेहतां नंबर नौ करे कि आप केड़ा बंब चल दे ओ ताया जी घर दे विच भी बंदा ठीक कई बार नहीं भी रहिंदा बस जी तेरे ना मुंह कोई अज की गल निकली बंदा कहिंदा भी ताया घर दे विच ते बंदा ठीक रहिंदा हो बाहर पवां ठीक ना रवे बाहर दे दा माहौल।

मकबूल शराब वाला गीत बड़ी साड़ी भावना शराब नू लेके चंगी नहीं, क्योंकि शराब जेड़ी आ शराब ती शराब हुण ते शराब बनदी आ गुड़गाड़ वाली, पहला अज तो 1000-2000 साल पहला उदो गुड़ गन्ना किथे हुंदा सी ते फिर शराब कदी बनाउंदे सी उदो भी बथेरे साहब हुंदे सी। ताड़ी दा रुख, अच्छा ताड़ी हुण भी इधर बंगाल बिहार वाल पींदे आ, अजे ट्रक चलाया 15-16 साल ताड़ी बहुत खुश होके पींदे, ताड़ी दी शराब बनदी सी। ताड़ी दा रुख बहुत माड़ा मन्ने जांदा, महाराज ने गुरु साहब जी ने भी गुरुआ पीर ने भी ताड़ी दे रुख की बहुत ताड़ना ही की आ, ते होर भी वेदा ग्रंथा ताड़ी दे रुख नू बड़ा अपवित्र मन्या जांदा है। क्यों मन्या जांदा? क्योंकि इहदे चों शराब निकलदी या शराब बनदी कह लो, ते ताड़ी दा रुख ही इन्ना माड़ा दे जिहड़ा पीण वाला उहनू किन्ना माड़ा समझिया होगा साधुआं संतां पीरां फकीरां गुरुआं ने। इस करके शराब दे पाकी ते हियां वाई नेगे, बाकी कोई नशे, बाकी नशिया बाकी जी नहीं बस ये दर्दां दुर्दां ली कुछ ठीक है। कहिंदे दुबारा एक बारी चलाओ ताजी गीत, ला दुबारा केड़ा दारू पीनी है।

0: इस प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई तुसी साडे नाल संपर्क कर सकते हो।
1: खूबसूरत आवाज दा सफर हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया मुड हाजिर होने एक छोटे जे वक्फे तो बाद सुनते रहो आवाज दी खूबसूरत परवाज हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सेंड अस मैसेज ऑन info@harmanradio.com।

0: ओ आजो आजो ताया जी वेलकम। ताया आज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथो किथों मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर इथो मिलदा सारा इंडियन फर्नीचर। जो भी तुहानू चाहिदा सब इथो मिलू। मंजे, धार्मिक फोटवां, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ इथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा। ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामण दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
1: रोटी हजम नहीं हुंदी, वरतों गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिलता गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी के सीधी खेतां चो मिल च लई जांदी। आस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डुआं लई स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो garewalgoldengrain.com.au या फोन करो 0428895564।
2: अपनी बिजनेस की तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
3: मुआफी चाहुंदे हां कि अज असी इस घंटे दा खबरां दा बुलेटिन तकनीकी कारणां करके पेश नहीं कर सके।

0: कारमेन रेडियो
1: 24/7।
2: पेत बारे स्पेन दी कहावत है कि पेत कारोबार दी रूह हुंदा है। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

सुनो भी दोस्तों, भावे बैठे हुए हो जा खड़े हुए हो, घर वाली नाल रसे हुए हो या फिर बापू नाल लड़े हुए हो, काम ते जा रहे हो या फिर काम तो घर वापस आ रहे हो, ओ भाई नहा रहे हो के कुछ खा रहे हो या फिर घर विच रौला रप्पा पा रहे ने न्याणे, ओ भाई दुखी ना होवो, सब गल्लां छड्डो आ सुनो हरमा रेडियो तो गाने। तुसी दोस्तो चाहे पिंडां विच बसदे हो जां फिर बसदे हो पिछे शहरां, हरमा रेडियो सदा मंगदा तुहाडियां खैरां।

पूरा खौफ दिखे मौत अगे वध वध पैंदा जिवें रिंग विच रॉक राती रोड़ां उत्ते काले शीशे गड्डिया दे खोल देना बारियां बंदे खास खास बैठे डाउंदे फुलकारियां इटली तो आया जेड़ा डीजे वाली यारियां बेस पौंदी भंगड़ा ते गड्डी नचे रोड़ दे फार्मर लिखे आए नीले सारे फुल दे और फिर जिंदी बॉस की कहिंदी है।

0: जिवें कि असीं हर रोज सांझियां करदे हां पंजाब सिख तारीख अते देश दुनिया नाल वापरियां कुछ अहम घटनावां दी जिन्हां दा संबंध खास तौर ते अज दे दिन नाल जुड़िया हुंदा है। सो लैके हाजिर हां जी कुछ अजिहियां ही इतिहासिक घटनावां कुछ वाकियात।
1: सन 1723 सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया का जन्म होया सी। सिख फौजां दे एक अहम जरनैल सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया का जन्म सरदार हरदास सिंह दे घर 5 मई 1723 दे दिन होया सी। सरदार जस्सा सिंह जरनैल नंद सिंह सांगणा की मौत पिछों उस दी मिसल दे मुखी बने सी। आपने किला राम रौनी बनाया ते इहदी सेवा संभाली। इस किले नूं बाद विच किला रामगढ़ भी कहा गया। इस करके इन्हां दी मिसल नूं वी मिसल रामगढ़िया कहा जाण लग पिया। सरदार जस्सा सिंह ने एक बहुत वड्डी रियासत कायम कीती सी। आप 1803 विच चढ़ाई कर गए। बाद विच महाराजा रणजीत सिंह ने इस रियासत उत्ते कब्जा कर लिया सी। सन 1834 सरदार हरि सिंह नलवा ने पेशावर उत्ते कब्जा कीता सी। लाहौर तो बाद रणजीत सिंह ने तकरीबन सारे पंजाब उत्ते कब्जा किया। सन 1809 विच अंग्रेजा नाल अमृतसर दा ऐदनामा करन तो पहला रणजीत सिंह ने शेखुपुरा अते कांगड़ा उत्ते भी कब्जा कर लिया होया सी। ऐदनामे तो बाद रणजीत सिंह ते अंग्रेजा विचकार दरिया सतलुज नूं हद मन्या गया। इस तो बाद रणजीत सिंह ने पछम वल मूह कर लिया। उसने गुजरात खुशाब साहिवाल हालोवाल डोडा फजीराबाद डस्का उत्ते कब्जा किया। 1811 विच सिंहपुरिया अते नकई मिसलां दी रचना दुआब विचले इलाकियां नूं भी खोलिया। इंज ही पहाड़ां विच जम्मू कांगड़ा अखनूर भिंबर लखनपुर नूरपुर गुलेर सीबा कोटला जसवान दातारपुर भी उहदी हकूमत दा हिस्सा सन। रणजीत सिंह ने सिख मिसलां मुगलां बलोचां अफगाना डोगरियां ते पहाड़ी राजपूतां तों रियासतां खोह के अपने कब्जे हेठ कर लईआं सी। 1824 तों मगरों डेरा इस्माइल खान वी 1831 चिण उस दे कब्जे विच आ चुक्या सी। हुण उस ने काबल वल मूंह कर लिया। इस रस्ते दी सब तों अहम जित पिशावर सी जिस उत्ते हरि सिंह नलवा ने बहुत घमसाण दी जंग तों बाद आखिर 5 मई 1834 दे दिन कब्जा कर लिया सी। सन 1916 भारत दे साबका राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह दा जन्म होया सी। सन 1948 भारत सरकार ने पटियाला अते पंजाब दीआं होर रियासतां तोड़ के पैप्सू सूबा बनाया सी। 1947 विच जद भारत अते पाकिस्तान मुल्क कायम कीते गए तां उस वेले पंजाब खिते विच पटियाला कपूरथरा जींद फरीदकोट नाभा कलसियां दीआं सिख रियासतां अते मलेरकोटला दी मुसलमान रियासत अते पहाड़ी हिंदू रियासतां कायम सी। 5 मई 1948 दे दिन भारत सरकार ने इन्हां नाल समझौता करके इन्हां नूं पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन जिहदे पहले हर्फ मिला के पैप्सू नां रखिया गया सी कायम कर दित्तियां। यादविंदर सिंह राजा पटियाला नूं इस दा प्रमुख यानी गवर्नर बनाया गया। बाद विच 1 नवंबर 1956 दे दिन इहनूं पंजाब विच शामिल कर लिया गया सी।
0: सो इह सन पंजाब अते सिख तारीख नाल जुड़ियां कुछ इतिहासिक घटनावां जिन्हां दा संबंध खास तौर ते अज दे दिन नाल जुड़िया होया है। सो देखदे हां जी अज दे दिन देश दुनिया विच की कुछ वापरिया सी।
1: सन 1818 जर्मन चिंतक कार्ल मार्क्स दा जन्म होया सी। सन 1883 पछमी बंगाल दे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एक पत्रकार दे रूप विच जेल जाण वाले पहले व्यक्ति बने सी। सन 1888 महान क्रांतिकारी त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती दा जन्म होया सी। सन 1912 स्वीडन दी राजधानी स्टॉकहोम दे विच 5वें ओलंपिक खेडां दी शुरुआत होई सी। सन 1912 रूस दा अखबार प्रावदा निकलना शुरू होया सी। सन 1955 भारत दी संसद विच हिंदू विआह एक्ट पास होया सी। सन 1956 जापान दी राजधानी टोक्यो च पहली जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप दा आयोजन कीता गया सी।
0: सो इह सन अज दे दिन नाल जुड़ियां कुछ इतिहासिक घटनावां जिन्हां दी सांझ तुहाडे नाल पाई गई है। मिलदे हां अगले एपिसोड विच अगले दिन दे इतिहास दे नाल। तद तक लई मैनूं दिओ इजाजत। सत श्री अकाल।
2: अरमन रेडियो 24 घंटे सत्ते दिन।
3: इंसान नूं अपनियां जरूरतां दे मुताबिक जिंदगी जीउणी चाहीदी है, ख्वाहिशां दे मुताबिक नहीं। क्योंकि जरूरतां फकीर दीआं भी पूरियां हो जांदीआं ने, पर ख्वाहिश बादशाह दी भी अधूरी रह जांदी है। सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: एस्किमोस कहंदे ने जेड़ा अपने ज्ञान दियां फड़ा मारे वो असल विच अपना अज्ञान प्रगट करदा है। लेखक परमिंदर सोडी किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे चंगे अते सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।
1: लो वी मित्रो इलेक्शनां दा टाइम आ ते इन्हां दिनां दे विच घरेलू लड़ाई दे तौर तरीके भी चेंज हो जांदे आ। भाई बिंदर धनोले दे लिखे हुए बोल थोड़ी नजर करन लगे आ, नाल मेरे बीबा प्रीत ठंडा ते फोक स्टूडियो तों साबी सहज होरी ते हनी माछी वाला भी सामने बैठा। सारा नूं मैं हार्दिक जी आया कहना, लै वी डीजे डस्टर चौथा काला रख ला, एक बारी नजारा आ जाए, आ जा बीबा।

0: 24 घंटे 7 दिन।
1: साझेदारी बारे तेलुगु वाले कहते हैं कि जे तू रोटी ते कपड़े ना मंगे ता मैं तेरा बच्चियां वांग ख्याल रखांगा। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

0: सुनावा खान सियाणिया दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा दाने दाने ते मोहर हुंदी है।
1: इस दा भाव है कि जो कर्मा विच हुंदा है ओ जरूर मिलदा है।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

0: रोटी हजम नहीं होंगी। वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल्स का गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट कैमिकल की वरतों वाली कणक जेडी कि सीधी खेतों चो मिल च लाई जाती। ऑस्ट्रेलिया का बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डू वाली स्पेशल बेसन, मल्टीग्रेन आटा, काबली छोले, मसरों की दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्ट हैं। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन .com.au या फोन करो 0428895564।
1: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। ओ आजो आजो ताया जी, वेलकम। ताया अज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथों किथों मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपां ले आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर इथों मिलदा। सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब इथों मिलू। मंजे, धार्मिक फोटवां, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ इथों मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन ही दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामण दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A 130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
2: तुसी सुन रहे हो अपना हरमल रेडियो, 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमल रेडियो।

फतेह जुगो जुग अटल दसां पातशाहियां दे आत्म स्वरूप तख्त चवर सिंघासन दे मालक धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे पवित्र चरणा कमलां विखे बड़ी ही श्रद्धा बड़ी प्रेमा भावनी दे नाल विशेष करके कुल कायनात दे रूहानियत दे केंद्री अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी विखे दीवान हाल गुरद्वारा श्री मंजी साहब जी विखे इस वेले जिन्हें भी आप जी गुरमुख गुरसिख माई भाई सतगुरां दे तरस दे पात्र बन के शरीरक रूप दे विच गुरु चरणां दे विच जुड़ रहे हां और जिन्हें भी माई भाई कुल जगत दे अंदर ओ टेलीविजन इंटरनेट दे साधना दे राही मन करके सुरती करके सतगुरां दे पावन दर घर दे नाल बड़े प्रेम दे नाल नित्ता प्रति जुड़दे हो सारियां गुरु कियां सिख संगतां सारे सतगुरु जी दे दर घर दे प्रीतवान सिख सेवक आपां वडभागे हां खालसा जी जिन्हां नूं इस वेले सतगुरां ने अपनी अमृत गुरबाणी दे हर जस कीर्तन दे नाल निवाजिया और जो पावन श्री मुखवाक अमृत वेले प्रकाशमान होण समें धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने बख्शिश कीते इस पावन गुर शब्द दी विचार दे नाल बंदा इह सुभागा भरिया अवसर सानू गरीबां नूं सतगुरां ने बख्शिया है जिथे पावन हुक्मनामा क्योंकि संत रूप दे विच है ते जो लड़ीवार गुरबाणी दी कथा चलदी है ओ भी इस वेले मारू राग दे विच सोलहे बहुत लमेरे शब्द इस करके जिवें सतगुरु जी दा हुक्म है केवल अखरी अर्थां दे द्वारा ही आपां गुरु के शब्द दी विचार दे नाल जुड़न दे आहर विच लगना है। आओ तरला लईए महाराज जिवें शरीरां करके अपनी चरणा विच आप ही लै आंदा मन करके भी साडी गरीबां दी हाजरी अपने चरणा दे विच लवा लो सारे माई भाई बड़े प्रेम दे नाल लवाइए गुरु चरणा विच हाजरियां करो रसना नूं पवित्र।

मंगलाचार है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी समुची बाणी की मथकार है जपजी साहब। जपजी साहब की मथकार निचोड़ है मूल मंत्र। मूल मंत्र की भी मथकार अत्यंत अत्यंत सूखम रूप दे विच गुरमत की सारी फिलासफी गुरमत का सिद्धांत इस मंगलाचार विच हजूर ने रखिया है। एक ओंकार इको एक अदुती एक रस व्यापक परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु सत गुर प्रसाद ओदे स्वरूप की लखता ओदे स्वरूप दे नाल मिलाप सतगुरु जी की कृपा दे द्वारा ही

तू ही दे अंदर धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी पर्वत मेराण सतगुरु जी घर तीजे सुरताल दे विच ए पावन अमृत बचन उचार

कहिंदे ने परमात्मा करता पुरख अपने भगत जनां दी सदा ही पैज रखदा ते हमेशा ही हर वक्त दे विच ओ अपने प्यारियां दी लाज अपने प्यारियां दी पैज भाई जनों रखदा आया।

0: बाबा।
1: फिर भगत कौन है जी जो गुरमुख होवे? महाराज जी फरमाउंदे ने भगत ओ है भाई जिहड़ा गुरमुख होवे। भगत अपने मन दी मत दे नाल नहीं बनिया जांदा। संखेप जी इहदे बाबत मैं विचार आप जी दे सन्मुख रख के अगे तुरां। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे वड्डे भराता बाबा पिरथी चंद, की उन्हें बाणी नहीं जी पढ़ी? की उन्हें गुरु घर च सेवा नहीं कीती? की माता भानी जी की कुखों जन्म नहीं होया? की माता भानी जी का दुध नहीं चुंगया? की धन श्री गुरु रामदास महाराज ने गोद विच ना खड़ाया? की गुरु अमरदास जी की गोद का निग नहीं माणिया? ते नुक्स की रह गया? भाई साहब भाई गुरदास साहब जी कहिंदे आ, इकत नुकतै होए जाए महरम मुजरम खैर खुआरी। महरम लिखना होवे फारसी दे विच उर्दू दे विच ते उहदा शब्द जोड़ स्पैलिंग बणदे आ मीम हे रे मीम, ते जे गलती नाल लिखदियां किते इक नुकता पै जाए इक छिट पै जाए ते हे जे बन जांदा ओह बन जांदा मुजरम। लिखिया तां महरम सी, गलती नाल एक बिंदी पै गई एक भुलेखे दे नाल छिट पै गई ओह मुजरम बन गया। महरम दा मतलब है दिल दा भेती ते मुजरम दा मतलब है गुनाहगार। गुरु अर्जन देव महाराज जी गुरमुख हो के भगत बन गए ते बाबा पृथ्वी चंद हउमै दा नुकता ला बैठा, मैं गुरु दा पुत हां, मैं वड्डा पुत हां गुरु दा। इस तों वी अगे जाके फिर कहिंदा मैं गुरु घर दा प्रबंधक हां, मेरे बगैर ते गुरु घर दा काम ही नहीं चल सकदा। इन्ना ही नुक्स पिया, ओ गुरु रामदास जी दा मुजरम बन गया जी। सतगुरु जी कहिंदे ने भाई भगत ओ है जिहड़ा गुरमुख होवे, गुरमुख हो के भगती करे ते दर ते प्रवान पै गया। जे हउमै आ गई ना, जे मन दी मत आ गई, ओ भगत नहीं हो सकदा। मेरे दाता जी कहिंदे ने ओ फिर गुरु के शब्द दे द्वारा अपनी हउमै नूं साड़ लैंदा, अपनी हंगता नूं नाश कर लैंदा है, ऐसा गुरमुख भगत।

गुरु के शब्द गुरु के उपदेश नूं कबा के अपनी हउमै नूं नास कर लिया, हउमै नूं साड़ लिया, हउमै शब्द जलाया, मेरे हर पाया, ओ परमात्मा दे दर ते पाउंदा है। जेड़ा मैं नहीं मार पाउंदा, ओ परमात्मा दे दर ते नहीं पाउंदा। जिस दी साची बाणी, परमेश्वर दी बाणी जो सदा अटल है, उस गुरमुख दे अंदर वास करदी है, फिर ओदे मुख दे विच वी जेड़े बोल ने ओ वी परमेश्वर दी ही बाणी हुंदी है, ते ओदे बोल वी सदा अटल हुंदे ने, ओदे मुख दे विच वी सदा वाहिगुरु दी वडियाई रहिंदी है।

जीवन की है, आप जपै अवरह नाम जपावै, ओ आप भी सदा जपदा ते जेड़ा उदे नेड़े आवे उन भी नाम दे नाल ही जोड़दा है। इस तरह गुरमुख आख वखाणी ओदा जीवन अपने आप दे विच ही गुरमत दे प्रचार दा साधन हुंदा है।

भगतां दी चाल निराली है, उन्हां दी जीवन जाच बिल्कुल ही निराली है, ते उन्हां नूं केवल नाम ही सच्चा पाउंदा है, बाकी संसार उन्हां लई कूड़ है। ते आपां रोज आनंद साहिब जी दे विच पढ़दे हां, भगतां की चाल निराली, चालाह निराली, भगतां हकेरी, बिखम मार्ग चलना, ओ ते खंडे दी धार ते सदा

0: सतगुरु अमरदास जी ने फरमाया कि जेडे भगत जन ने ना गुरमुख ओ सोभदे ने परमेश्वर दे दर ते सोभा पाउंदे ने जिन्हां ने सच दी कमाई कीती है।
1: हर भगत की जात पात है, भगत हर कै नाम सुमाने राम।
0: जदों अमृत छकदे आ ना सारियां नूं गुरु के सिखां नूं ए बेनती है भाई, गुरु वाले बने बगैर गुरु दे दर ते परवाह नहीं चढ़िया जाना। जदो खंडे बाटे दी पाहुल लैने आ अमृत छकदे आ, पंज प्यारे की कहिंदे ने, तेरी जात भी नाज, तेरी पात भी नाज, तेरे पुराने कर्म भी नाज, पुराना तेरा सारा कुछ ही लेखा पाड़ गया हुण नवे सिरों। फिर आपां गुरु दे पुत हो जाने आ, गुरु दियां धीआं हो जाने आ, फिर साडे पिता धन गुरु गोबिंद सिंह जी, फिर साडे माता माता साहब कौर जी, फिर असी वासी आनंदपुर साहब दे। ए खालसे पंथ दी अपनी कौमी पछाण है आपां गवा के। मेरे हजूर कहिंदे ने कि परमेश्वर ने अकाल पुरख ने इन्नी कृपा कीती कि भगत जन अपना आपा गवा के कहिंदे, मेरी जात भी वाहेगुरु, मेरी पत भी वाहेगुरु, मेरा सबो कुछ ही परमेश्वर है, ओदे तो बगैर कुछ दूजा ओ अपना जानदे ही नहीं कदे भी। ते अणदिन हर वेले भगती दे विच ही लगे रहिंदे हन, हर वेले उन्हां दा मन भगती दे विच है।

ओ भगती दे विच सदा जुड़े रहिंदे अपना आप गवा के ते हर वेले वाहिगुरु दे गुण गाउंदे ते ओदे गुण गाउंदे गाउंदे गुण कह गुणी समावणिया ऐसी

गुण अवगुण पछाणे। सिख ने पछाण लिया कि पंज ककारां दी रहत विच मैं पक्के रहना ते अवगुण जिहड़ियां चार बजर करहितां ने इन्हां तों मैं सदा दूर रहना। गुण अवगुण पछाणे, हर नाम वखाणे, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सद काम। भै भगत मीठी लागी, उन्हां नूं भै भगती, परमेश्वर दे चरणा कमलां दा प्यार, सदा सिमरन, सदा सेवा, एदे विच ही आनंद आउंदा है।

किरतकार करदियां भी सतगुरु जी दे प्रेम दे विच भिजे भगती करदे रहिंदे आ ते घर विच रह के ही बैरागी है। जो सतगुरु कलगीधर जी दा उपदेश है ना, रे मन ऐसो कर सन्यासा बन से सदन सबै कर समझो मन ही माहे उदासा। परिवार छड के जान दी लोड़ नहीं पैंदी, ओ घरे बैठे बैरागी हन।

रत्ते गुरमुख सतगुरु जी दे प्यार दे विच रत्ता होया जेड़ा गुरु दा परम सिख है पुग गया भगती राते सदा मन निर्मल अंदर कोई मैल नहीं हर जियो वेखै सदा नाले ओदी अवस्था है कि गुर मेरा संग सदा है नाले सिमर सिमर तिस सदा संभाले हर वेले हाजर नाजर जा

ए अखीरली तो कह ते अपने नानक नाम दी मोर छाप लाग के धन गुरु अमरदास महाराज जी कहिंदे ने कि ओ भगत रब दे प्यारे मालक दे दर ते सच्चे हो गए ते अनदिन हर वेले नाम दे विच समाए होए रहिंदे है। नाम नू अपने हिरदे विच

जेड़ा मन मुख हो के भगती करन दा यतन करे, बाणी ते मैं पढ़दा पर मैं बाकी पखंड नहीं त्याग सकदा, मैं नशे नहीं त्याग सकदा, मैं केसां दी बेदबी नहीं त्याग सकदा, खिमा करना ए मनमुख हो के भगती करना है। सतगुरां दे आखे लगे बगैर, गुरु दा हुक्म मन्ने बगैर, विण सतगुर भगत ना होई राम, भगती प्रवान नहीं।

भगती तो बगैर होर जिन्ने भी काम असी करदे फिरदे आ ना अवर काज तेरा कितै ना काम। अंत नूं जाके सिर लागा जम दंड तां पछताणिया। अंत नूं पछतावा हुंदा है कि जेडे कमां लई मैं जीवन व्यर्थ गवा दिता इन्हां कमां दा ते असल विच कोई मतलब ही नहीं।

कोट मध्य को विरला सेवक और सगले व्यवहारी। कोट मध्य किने पछाणिया, किसे ने पछाणी ये गल, ते बाकी सारा जगत विचारा ओ तां भरम दे विच भुला चोटा खांदा रहिंदा है। इस करके साध संगत जी हर नामा सच सोई, उन्होंने सच्चा नाम जेड़ा है ओ हिरदे विच तारिया, सच्चे नाम दे ओ वपार।

गुरु धन श्री गुरु अमरदास साहब जी फरमाते ने नाम के द्वारे वड्याई मिलती है। सतवीं पौड़ी है ना जपजी साहब जी की, ये सारी व्याख्या इस तुक की हो रही है। महाराज जी कहिंदे जे युग चारे आर जा, उम्र जिन्नी मर्जी लम्मी हो जाए, जिन्ना मर्जी मशहूर हो जाए, लोग जिन्ने मर्जी मगर तेरे तुरे फिरन, पर आखरी गल ए है जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के ए है असल गल। नानक नाम मिले वड्याई, नाम दे द्वारा ही वड्याई मिलनी है। दूजे पाए पत खोई, जे दूजे पाए विच लगा रहा ते पत खोई, सारी पत

सतगुरु जी ने कृपा की है कि जेडे भगत जन ने ना गुरमुख उन्होंने कार्ज वाहेगुरु आप करदा भगतां कह घर कार्ज साचा उन्होंने सच्चा कार्ज केड़ा सी भला ओसी नाम ओसी सिमरन ओसी सेवा ओ गुरु दा बचन गुरु दी रहत ओसी पर उपकार आपा गवा के वाहेगुरु दी रजा हासिल करनी तो जेड़े गुरमुख ने ओ सदा ऐसे

अपने प्यारियां नूं भगती दा खजाना वाहिगुरु ने आपे बख्शिया ते काल कंटक नूं मार समाया। ओ काल कंटक नूं मार के उच्चे हो गए, सतगुरु जी दे बचना नूं कमा के गुरबाणी दा रूप हो गए।

0: पाया।
1: काल कंटक नु मार के वाहिगुरु दे विच समा गए, वाहिगुरु नु पाए ते उन्हां ने परमेश्वर दे नाम दा खजाना पा लिया। असल जेडे शाहूकार बन गए, असल जेडे तनवान ओ बन गए। महाराज जी कहिंदे ने से तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत ऐसी कृपा।

नाम का जिहड़ा खजाना फिर ए हो जिहा है कि यह सदा अखुट रहिंदा निखुटदा नहीं कदे भी इहदे विच घाटा नहीं पैंदा जो सुभावक रूप दे विच ही वाहिगुरु ने अपने प्यार

गुरु के शब्द दे नाल लग के ऐसे सोभनीक हो गए, गुरमुख उच्चे हो गए। वेल होवे ना, वेल कोई सब्जी दी, ते जे ते ओ दरखत दे लागे बीज दईए ते दरखत ते चढ़ जांदी, उच्ची हो जांदी है। जे खूह दे लागे होवे ते खूह दे विच लमक के नीवी हो जांदी है। जे हो जी संगत करांगे खालसा जी, ओहो जिहा जीवन हो जाएगा जिन्हां ने गुरु के सिक्खां दी संगत कीती, गुरु की संगत कीती।

0: धन सतगुरु जी फरमाउंदे ने उन्हें आप ही अपने नाल संभाले गुरमुख ते जुग जुग उन्होंने शोभा पाई। ऐसे गुरमुख दा ऐसे ही सतपुरख दा अज जन्म दिहाड़ा भी है। महान योधे संत सिपाही पर उपकारी धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी दीआं बख्शिशां दे पात्र सिख पंथ दे जरनैल सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया उस महाबली योधे दा जन्म उन्हां समयां दे विच खालसा जी होया जदों पत्ता सिंघां दा वैरी सी, जदों हर साल ढंडोरे पिटे जांदे सी कि सिख असीं मुका दित्ते ने, सिख रहा ही कोई नहीं। जदों दसण वाले नूं 10 रुपये ते सिख दा सिर वढ़न वाले नूं 50 तों लै के 80 रुपये तक दा इनाम मिलदा हुंदा सी। ते जदों उस गुरमुख महापुरख ने अपनी देह दा त्याग कीता ना, उस वेले लाहौर ते भी खालसे दा निशान झूलदा सी ते दिल्ली दे लाल किले ते भी खालसे दा निशान झूलदा सी।
1: सत श्री अकाल।
0: खालसा जी भगत भी अंदरों भगत ते बाहरों शक्ति भी है, अंदरों संत ते बाहरों सिपाही, ऐसे गुरमुख ऐसे सतपुरख। सो लड़ीवार रूप दे विच जिते सतगुरु जी दे पावन अमृत बचना दी विचार ऐस वेले श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 1072 उपर खालसा जी ऐस वेले पहुंची है। राग मारू दे अंदर 16 जो 16-16 पदियां वाले शब्द हुंदे ने, इन्हां दी विचार चल रही है। ते आओ बड़े प्रेम दे नाल लड़ीवार कथा दे भी दर्शन दीदारे करिए जी।
1: मारो 16 महला पंजवा।
0: राग मारू दे विच 16 पदियां वाले, जिवें 2 पदे, जिवें 3 पदे, जिवें 4 पदे, इसे तरह पंच पदे भी विच विच आए ने। ते साध संगत जी फिर अष्टपदियां ते इसे तरह ये 16 हन, 16 पदियां वाले शब्द। तो साध संगत जी धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ये पावन अमृत बचन बख्श रहे हन।
1: एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
0: इको एक अदुत्ती एक रस व्यापक परमेश्वर वाहिगुरु सतगुरु जी दी अपार कृपा होवे तां ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर दे स्वरूप दी लखता हुंदी है, ओदे स्वरूप दे नाल अभेदता पाई दी है।
1: संगी जोगी नार लपटाणी।
0: ए पावन बचन दे अंदर साध संगत जी रूपक अलंकार दे द्वारा महाराज जी ने ए देह दी साखी सारी लिखी है। ए शरीर ते आत्मा दी आपो विच दी गल बात है, संवाद है। जीवन दी सच्चाई महाराज ने सानू एदे विच समझाई है कि भाई तेरे जीवन दा असल प्रयोजन की है। संगी दा अर्थ हुंदा साथी, ते एते जोगी दा अर्थ है आत्मा, जीव आत्मा। जदों परमात्मा दी अंश आत्मा माया दे प्रभाव दे विच आप नू स्वतंत्र रूप दे विच जाने तां उहनू जीव आत्मा कहिंदे। दर्शन शास्त्र दे ए सारे साध संगत जी ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਤੋ ਇਹਤੇ ਅਰਥ ਆਵੇਗਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਨਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਬਾਡੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਦੇਹੀ। ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗੀ ਜੋਗੀ ਨਾਰ ਲਪਟਾਣੀ, ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ।
1: ਉਰਜ ਰਹੀ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੀ।
0: ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਤੀ ਤੇ ਦੇਹ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਇਹ ਉਰਜੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਰਸ ਮਾਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਰਸ ਕਸ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ।

0: जपजी साहब विच पढ़दे आं करमी आवै कपड़ा कपड़े तो ते भावै शरीर किरत संयोगी भए एकत्रा पूर्वले कीते हुए कर्मां दे अनुसार परलब्ध बनी ओदे अनुसार ए देही प्राप्त होई ते ए देही जदों प्राप्त कर लई ते फिर जीव लग पिया खाण पीण वगैरा खाणा पीणा हसना सौणा विसर गया है मरना खसम विसार खुआरी कीनी त्रिग जीवन नहीं रहना एदे विच लग गया
1: जो पिर करै सो धन तत मानै
0: जो भी पिर भाव के जेड़ा जीव है ना अंदरों ओ कहिंदा है ते जीव ही वेखदा है ना जीव ही उठदा है तुरदा है बहिंदा खलोंदा है शरीर ने अपने आप कुछ नहीं करना जो अंदरों मन कहिंदा है ना जीव कहिंदा है ओ दे ही कर दी है
1: फिर धन है सिगार रखा संगाना
0: ते फिर जेड़ा पिर है जीव आत्मा ए धन नू भाव शरीर नू बड़ा शिंगार शिंगार के रखदा बड़ा संभाल।

0: एक वस्तु है ना जेड़ी वो है नाम असल वस्तु ओदे तक पहुंच नहीं हो रही जीव दी इसलिए शरीर भी भुखा ते आया ते मन भी भुखा ते आया सदा रहिंदा
1: धन कर बिना दो कर जोड़
0: ए जेड़ी देही है ना धन देही ए हाथ जोड़ दी है बार बार तरले ले रही है
1: प्रेम पर देश न जाहो वसो हो घर मोर
0: के हे मेरे प्रे जी परदेश ना जावो ते सदा मेरे विच ही वसो के कदे माड़ा जा बुखार चढ़ जाए फिक्र पै गया डर पै गया माड़ी जी को गल हो गई उस वेले डाक्टर दे कोल क्यों भजदे आ इस करके के हे प्रे जी परदेश ना जाओ इत्थे

0: एहो जिही कार्ज करो एहो जिही बणज करो देही दे विच रहिंदे आई जिस करके तृप्ति हो जाए भुख प्यास उतर जाए पर दुनियावी साधना दे नाल ए तृष्णा रूपी भुख कदे बुझदी थोड़ा है।
1: सगले कर्म धर्म जोग साधा
0: सारे कर्म धर्म साध साध के वेख लै सारा कुछ ही किसे ने किसे तरह किसे ने किसे तरह किसे ने इंद्रिया दे रस मान मान के शायद एदे नाल ही मैं तृप्त हो जा नहीं गल बनी किसे ने बिलकुल ही त्याग दिते के शायद एदा गल बन जाए ता भी नहीं बनी हर प्रकार दे जतन करके वेख लए
1: बेनहार रस सुख तिल नहीं लादा
0: नाम दे रस तो बगैर किन्ने भी यतन संसार ने कर कर वेख लै कदे किसे नू रज नहीं आया कदे किसे ने लाहा नहीं लिया।

0: जे सतगुरु कृपा कर दे ते पांच पते हो गए ने ते सतगुरां ने अपने नाम की मोहर छाप लाई है नानक रूप दे विच भये कृपाल नानक सत संगे सत संगत की दात जे वाहेगुरु दे दवे ना ताई जाके अंदरों मन भी ते तन भी तृप्त हुंदा रजदा है।
1: धन अंधी पेर चपल सयाना
0: जेड़ी धन है ना देही है ए ता जड़ रूप है ए ता अंधी है शरीर आप तो कुछ नहीं ना करन जोगा ए ता केवल हार्डवेयर है ना अंदर वाला सॉफ्टवेयर ता ओ जीव है ओ बड़ा सियाना ओ बड़ा तेज है ओनू सब सोझी है।
1: पंच तत् का रचन रचांदा
0: ये सारी जिन्नी खेड है पंजा तत्तां दा रचन ही रचिया होया है पंजा तत्तां तो ही सारा जगत बनिया है। पंच तत् कर तुद सृष्ट सब साजी कोई छेवां करे ओ जे किछ कीता होवे ते पंजा तत्तां दी ये सारी खेड है। अप तेज बाय पृथ्वी आकाशा ओदे तो रस रूप गंध शब्द स्पर्श ए जेड़े पांच इंद्रियां नू लगे हुए रोग हन एदे विच ही सदा रचे रहिंदे आ।

0: सच्चे पातशाह जी सानू उपदेश दे रहे ने भाई जेडे वखरली तुसी आए हो ना जिस जल निद कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाही जियो ओ गुरु दे कोल ही जिदे करके तू भुखा ही रहना है कदे रजदा ही नहीं ओ दात जे लैनी हो ते गुरु दे कोल है ते गुरु के सिखो ओ दात केड़ी है सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया इसलिए भाई सतगुरां दी शरण लईए ते खंडे बाटे दे अमृत दे धारनी होइए
1: धन कह तू वस मैं नाले
0: धन जेड़ा है ना दे ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਦਾ ਰਹੋ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋ ਭਾਵ ਕਿ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਜੀ

0: ना रहा ते मैं की हां भला मुश्ते खाक मिट्टी दी ढेरी फिर काडो काडो होई जब लग तेल दीवे मुख बाती तब सूझे सब कोई तेल जले बाती ठहरानी सूना मंदर होई रे बावरे तो हे कड़ी ना रखे कोई इस करके दे कहिंदी है जीव आत्मा नू के पति जी तेरे बगैर मेरा कोई मुल नहीं तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं
1: पिर कहया हो हुक्मी बंदा
0: पिर ने आख्या मैं ता हुक्मी बंदा हुक्म दा भेजिया होया आया हां ते हुक्म दा सद्या होया ही जावांगा
1: ओहो पारो ठाकुर जिस कार ना शंदा
0: ओ जेड़ा मेरा मालक है ना जेड़ा हुक्म दिंदा है गुरु अंगद देव महाराज जी दा वचन है श्लोक महला दूजा तिस स्यों कैसा बोलना जे आपे जाने जान चीरी जाकी ना फिरे साहिब सो प्रवान ओनू नी किसे दी परवाह ओदे अगे कोई राणा कोई राजा कुछ नहीं टिकदा ओ ता हुक्म करदा।

0: बारे अपने भगत जन की सदा रखी है जो पावन श्रीमुख वाक दे अंदर आपा कथा श्रवण की है ओ शरण दा दाता है ते बचन दा सूरा है।
1: ऐसा प्रभ मिलिया सुख दाता,
0: ऐसा प्रभु ऐसा परमेश्वर सुखां दा दाता ओ सानू हुण मिलिया गुरु दी शरण पै के।
1: विछुड़ ना कत ही जासा है,
0: जिस तो कदे मुड़के विछोड़ा नहीं पैंदा। देह दा ते जीव आत्मा दा तां विछोड़ा निश्चित है, इहदे पैणा है ते फिर ओ खसम लभ लईए जिहदे तों विछोड़ा कदे नहीं पैणा। ओ खसम सदा सदा रहण वाला पार ब्रह्म परमात्मा है, अकाल पुरख है। इस करके भाई ओदियां ही आपां वहुटियां मणिए, ओदे लड़ लगीए, ओनू ही अपना आपा सौंप दईए। ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता, विछुड़ ना कत ही जासा है, ओदे तो कदे मुड़के विछोड़ा

जी नानक नाम दी मोहर छाप ला के हजूर कहिंदे आ नानक सरण दीन दुख भंजन जिहड़ा दीना दे दुखां दे नाश करन वाला पूरा परमेशर है असी भाई ओदी शरण विच हां सदा ओदी शरण विच ही रहना चाहीदा है। हे दाता अपनी शरण विच सानू रख लै। ते फिर कहिंदे ने हां रेण मैं चरण धूड़ा तेरे जो दासा है जेड़े तेरे दास ने ना उन्हां दी मैं चरण धूड़ हां। ए निम्रता जिते सतगुरां ने विखाई उते सानू ए सिखाया भाई जे कुछ लैणा ते चरण धूड़ हो के मिलना है चरण धूड़ हो जावांगे ते फिर सारा कुछ ही प्राप्त हो जाएगा। ते जे खालसा जी अपना आपा गणावांगे ते फिर अंत नूं जो फिर देही दी ते जीव आत्मा दी कथा दे विच संवाद दे द्वारा सानू दस्सिया है फिर वह विछोड़ा होना है फिर वह दुख भोगने पैने ने। इस करके भाई गुरु के सिखो जिथे सतगुरां दी शरण लईए जिथे गुरु की बाणी दे नाल नितनेम दे नाल रहत दे नाल जुड़िए खंडे बाटे दे अमृत दे धारनी बनीए उते खालसा जी नाल पर उपकारी हो के हर एक सिख दूजे सिख दे संबंधी मन दे विच भै भावनी रख के सिख दी सेवा ही गुरु दी सेवा है। इसलिए अपने लोड़वंद भरावां दी बांह भी फड़िया करिए अपने आसे पासे वेख्या करिए कि की सतगुरु ने मैनू दिता है ते कोई लागे है जिन्हू लोड़ होवे ते गुरु दा दिता जान के आपां किरत दे नाल नाल नाम जपना ते नाम जपन दे नाल नाल वंड के छकना ए जीवन दे विच धारण करिए। समय दी साध संगत जी समाप्ति है। अत्यंत अत्यंत शुकराना धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दा बहुत बहुत धन्नवाद है। समूह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और जिन्हें भी इस स्थान दे ग्रंथी सिंह सेवादार अत्यंत धन्नवाद मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी अमरजीत सिंह जी इसे तरह साध संगत जी आओ अखीरले बचना नूं रसना द्वारा सांझे करिए सतगुरां दे दर कर दियां खुशियां।

गुरु प्यारियो, तुसी आपो अपने कारोबारा अपने घरेलू कम्मा कारा विच रुझे हुए जां गड्डियां विच बैठे मंजिलां तय करदे हुए आनंद मान रहे सी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो बख्शिश हुए अज दे हुक्मनामे दी कथा विचार दा। तां अज दे कथा विचार प्रोग्राम दी इत्थे ही समाप्ति है। आजाद चाहुंदा हां मेनू दलजीत सिंह नूं दिओ आजाद, कल इसे समय मिलके सरवण करांगे कथा विचार। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

0: तुरकी बाणी आए तिन सगली चिंत मिटाई। तुरकी बाणी सानू गुरु साहबान ने साडे ते तरस करके अपनी किरपा द्वारा प्रेम पदार्थ बख्शिया है। जद असी गुरबाणी विचारदे हाँ तां साडियां गुरु साहबां नाल गल्लां हुंदियां हन। गुरु साहबां नाल गल्लां करन दा एक नमाणा जिहा हीला प्रोग्राम गुरबाणी विचार दे तहत हर रोज सुनना शामी हरमन रेडियो ते।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ।

मुहावरे बारे हिब्रू दी कहावत है कि मौके अनुसार कहा मुहावरा हीरे वर्गा हुंदा है, ए रोशनी भी करदा है ते कटदा भी है। सोने विचारां दे

लापरवाही बारे सियाने कहंदे हन कि लापरवाही चोर नालों भी वध के नुकसानदेह हुंदी है। विद्या विचारी तां पर उपकारी। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

सेहत वाले अल्बानिया वाले कहंदे हन कि चंगी सेहत ते चंगी पत्नी बंदे दा सब तो वड्डा सरमाया हुंदा है। विद्या विचारी तां पर उपकारी।

जे तुसी सोचदे हो कि कोई होर ए सोचदा है कि ओ थाडे तो वधिया है ता शायद ए तुसी खुद ही ए सोचदे हो कि ओ थाडे तो वधिया है।

स्पेनिश कहावत अनुसार उम्र न सिर्फ चेहरे ते ही चुरड़ियां पैंदियां हन पर उत्साह मुक जावे ता रूह पर भी चुरड़ियां पै जांदियां हन। किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे लिखारी परमिंदर सोढ़ी सोहने विचारां ले जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

0: आओ सुनावा अखाण सियाणिया दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा सरफा करके सुत्ती आटा खा गई कुत्ती।
1: इस दा मतलब है कि जद कोई सूम बचत करे पर नुकसान वध हो जावे।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया
2: मां इच्छरां दा रोकिया पूर्ण ना रुकिया ते लूणा दे मेली मत्था टेकन जा पहुंचिया। लूणा अपने हाणी पूर्ण दी खूबसूरती वेख उसकी जवानी पर मोहित हो गई। लूणा दा भी की कसूर सी पर जवानी दे विच वडेरी उम्र दे राजे सलवान दे उसनू लड़ ला दिता गया सी ते कहन लगी पूर्णा मैं तेनू बहुत प्यार कर दी। पूर्ण ने हैरान होके कहा कि तू मेरी मां तू मेरे प्यो राजे सलवान दी राणी आ तू इस तरह सोच भी किवें सकदी है। मां लफ्ज सुन के लूणा दी देह कंब गई ते अपने अंदर मचल दे सुपने ते सदरां दी पूर्ति ना हुंदी वेख पूर्ण नूं कहन लगी कि अपनी मां पुत दी रिश्तेदारी भला केड़े पासे हो।

ना शुकरा बन बारे रूस की एक कहावत अनुसार नंगे नु कपड़ा देवोगे तो वह कपड़ा मोटा होने की शिकायत करेगा। लेखक परमिंदर सोढ़ी, किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे। चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

युद्ध बारे फ्रांस की कहावत है कि युद्ध चोर पैदा करता है अते अमन उन्हां नूं फांसी चढ़ाउंदा है। विद्या विचारी तां पर उपकारी।

0: ओ आजो आजो ताया जी वेलकम। ताया आज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथो किथो मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपां ले आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा। सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे, धार्मिक फोटोआं, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन ही दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामण दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A 130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 0404-000-536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
1: रोटी हजम नहीं हुंदी, वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिलता गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी कि सीधी खेतां चो मिल च लई जांदी, आस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा। ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डूआं लई स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बदाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो garewalgoldengrain.com.au या फोन करो 0428-895-564।
2: अपनी बिजनेस की तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
3: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो। हरमन रेडियो, हर्मन रेडियो।

0: पलंग कठे हुए
1: भजना अमली
2: बड़े बड़े शिकारी रहे हैं संत के
1: गुरप्रीत भुगी
3: मैं ते ओनू करदा सौरी दियो
1: माई मोनो
4: पोस्तियां
1: पोस्ती
5: अपनी मारी जाने हो मेरी भी सुनो
1: पोटू
3: शाह यार जेल जाके भुले शाह तो नहीं मर गया
1: और खास खास कलाकारां दी कॉमेडी
6: बोलता ना बोल मैं पता नहीं केड़ी गल्लां चुप
1: हर रोज शाम नू 7 to 8 बजे तक सिडनी समय मुताबिक
7: भजनिया तेरी ता लाके च बड़ी चर्चा होई पई है कहंदे ने तेरे ता ऑपरेशन कीते बड़े कामयाब ने
2: हुण ही आ तेनू मैं दसा जदो ऑपरेशन करी दे बहुत बढ़िया ढंग दे नाल
7: कहंदे ने भई गामे दे प्यो नू सारे हस्पताल तो जवाब देता सी
2: आहो
7: ते ओदा इलाज तू कीता
2: मैं ही कीता होर किने करना सी जित वाले तारी ने ओ ता संती ओनू चक ले सी जदो मैं देखियो दी हालत बड़ी माड़ी सी
7: ना ओनू बीमारी की सी
2: बीमारी ए आ भी एक ता साडे माड़े लीडरां ने साडे पंजाब दा बीड़ा गर्क करता वोटां दे दिनां दे विच संती इत्थे की नहीं चलदा शराब हुक्की फीम कैप्सूल वोटां दी खातर इन्हां ने साडे पंजाब दी नौजवान पीढ़ी नू मैं कह नरक च सिड़ता
7: ना फिर तू की कीता
2: संती जदों मेरे कोले लेके आए जदों मैं चीर फाड़ कीती जदों मैं ओहदा गुरदा कढ़िया
7: हां
2: ओहदा संती गुरदा सुकदा सी
7: हाय हाय
2: मैं कुड़ी नू नर्स नू कहा मैं क्या कर भी गुरदा धो के लेके आ चंगी तरह धो के आए कर भी ये गुरदा बड़ा होर तरह जी होया पिया इनू थोड़ा जा सेक लवाई ऐ कर भी कोठे ते सुकना पा दे
7: अच्छा
2: ताकि गुरदा थोड़ा जा सख्त हो जाए उथे संती का आया गुरदा लेके उड गया जदो कुड़ी ने आके मेनू दसिया भगदड़ मच गई मैं क्या घबराउण आली कोई गल नहीं वैसे जे लोकां नू पता लग गया मैं कह भी अपनी क्लीनिक दी बदनामी बहुत ओ काम हो जू खराब
7: फिर
2: मैं सोचिया संति भी इन्हें बचना ता है नहीं
7: हाँ
2: मैं किते नाल ही संति गंडा पिया मैं गुरदे दी जगह गंडा फिट करके दे सड़ोपे तोपे ला के ओनू मैं घरदयां नू कहा मैं कहा भाई ले जो हालत इहदी हैगी आ बहुत माड़ी ते जे बच गया थोड़ा ते नहीं इहदी सेवा सुभा कर संती मैं महीने बाद जदों देखिया वोटां च जदों नवी सरकार बनी है ओ ता ढोल ते भंगड़ा पाई जावे
7: अच्छा
2: मैं संती नू देख के हैरान रह गया ओने जदों मेनू देखिया ता मेरे वल नू भज्जिया वे डॉक्टर साहब मैं क्या भी की हाल आ कहंदा जी मैं ता मिठाई दा डब्बा लेके आना सी मैं जमा ठीक हां थोड़ी कृपा होगी मेरे लई ता तुसी रब बन के बौड़े हो मैं क्या भी तेरे गुरदे दा की हाल आ
7: की कहंदा
2: कहंदा जी गुरदे दा की हाल पुछदे हो गुरदा ता हुण भूखा कड्डी खड़ा
8: Harman Radio 24/7

0: हरमन रेडियो तमाल बा कमाल।
1: इस गीत विच हिंसक अते मार चाड़ वाला विषय है। ये एतराज है तो सरोते थोड़े समय लिए आवाज धीमी कर सकते हैं।

0: ओए काकेशा, ये की सारा ही पिंड सुनना होया पिया। ए मेरे रब्बा, सुख होवे। ओ परे बुजुर्ग बैठी है, उनक जाके पूछती है कि पिंड दे विच की गल हुई। ना बुजुर्गो, तुसी भी उदास बैठी हो, ओ कोई मेनू अपनी उदासी दा कारण ते दसो।
1: खट्टियां ते मिठियां सुनाउंदा सी कहानियां।
2: हां, केटे होणा दियां ने गल्लां पड़ानियां।
3: सच दे विच भी है नी रौनक।
2: हां, पिंड दे सुनने थड़े गए।
0: ना बुजुर्गो, गल की होई?
2: गल के होणी काका, फोटो शादी फड़े गए।
0: ए हां गल है। ओ बुजुर्गो, तुसी घबराओ ना, मैं जाके थोड़े पिंड दी रौनक जेल तो वापस लेके आना। ले भाई, आ गई या सेंट्रल जेल।
4: ओ हां भाई, ओ केनु मिलना?
0: ओ मैं जनाब मिलना पोटू शाह नु।
4: पोटू शाह नु? ओए बाहर ही शाह आ, अंदर ते ही भुखा ही बिठा लिया। जाके मिलना सामने बैठा।
5: इस घंटे विच तुसी सुन रहे हो पंजाबी गीत अते पंजाबी कॉमेडी।

0: की गल होगी हुण किन्ना पंगा ले लिया किन्ना लड़ पिया कित्थों वैनिया सट्टा सुट्टा लवा लिया
1: ओ लड़ना काहदे नाल आ संतिए हुण तां दिन जदों बंदे दे माड़े चलदे हुण संतिए ओदों काम इदां दा हो जांदा
0: की गल होगी
1: बस आई नशे दे काम खराब कीते आ संतिए चार पांच दिन पहला मैं किते नशा ज्यादा कर लिया ओ बस संतिए चौंदी जी लगी मैं भुलेखे नाल किते खंभे ते आ बिजली आले तारा तुरा ते चढ़ बैठा
0: है वे खंबे च लाइट है नी सी
1: ओए ओदों दा शांतिए बिजली है नी सी
0: अच्छा
1: बाद च किते बिजली आ गई
0: हाय हाय वे फेर
1: जदों बिजली आई शांतियों ने मारा मेरे शॉट भड़का के मेनू थल्ले सिटता
0: नी मैं मर जा
1: लोग कठे हो गए शांति ओना ने मेनू दब दुब के मेरे मालश मुड़श करके मैं होश च आया
0: अच्छा
1: लोग मेनू पुछन लग गए कहंदे ओ बिजली आले खंबे तो उपर तू की करन गया सी
0: वे अमलिया तैं की कहा
1: मैं कह जी ऊपर मैं दातन तोड़न गया सी
2: हास रास कलाकारां दे हासे ठठे हरमन रेडियो ते

0: आम गल है कि बंदे जनानियां तो डरदे ने, मेरी गल लै लो, मैं जनानी तो बिल्कुल नहीं डरदा, पर परसों मैं टिंकू की मम्मी नू नवी साड़ी खरीदन की सलाह नहीं दी, वो आकड़ गई सवेरे उठ के मैं जा नहीं दी, मेरा की कर लिया, मेरी अणख जागी, मैं मंजे च उठिया, उठ के चाह तरी, बच्चे तैयार करके स्कूल भेजे, घर की सफाई करी, हालात नू देखते हुए यह सारा कुछ करना पैंदा है, यह तो चाही धरी है, कई बार तो नहाउन नू पानी भी गर्म करना पैंदा, पर इहदा मतलब यह नहीं कि मैं जनानी तो डरदा, वह गल वख है कि मैं घर के सारे काम करदा, साडे गवांडियां दे नित कपड़े धोण पिछे लड़ाई हुंदी है, बंदा सुभा दा नरम है ताइयों दी बेलियां नाल कटाई हुंदी है, पागल है एवें कुट खाई जांदा, किन्नी बार समझाया है भी रोटियां पका के वेल नाल घोलिया कर, क्यों छोटी छोटी गल पिछे बेइज्जती कराउणे, भांडे भी मांजदे ही है कपड़े धोलिया कर, परसों जदों मैं अपने घर नूं आ रहा सी तां ओही गवांडी कपड़े धो के सुकणे पा रहा सी, इहदा मतलब यह नहीं कि वह जनानी तो डर गया, वह गल वख है कि उहदा दिमाग काम कर गया, सारिआं दा जाणिआ पछाणिआ नां जरनैल घमाण, मैनू ओहदे अणखीले मर्द पुणे ते रब जिड्डा माण, परसों जदों मैं ओहदे घर गया जिंदगी दे किसे मोड़ ते आके ओह वी जनानी तो डर गया, गल की सी 5-7 सहेलियां ने कट्ठे होके पिक्चर देखण जाणा सी, प्रोग्राम बनिआ सी कि रीटा सहेली दे घरे रात दा खाणा सी, उधर घमाण साहब किसे प्रोग्राम तो सन्मानित होके आए सी, इस करके असी उहनां ने रात दे खाणे ते घर बुलाए सी, एक पासे सिनेमे दीआं टिकटां ते सहेलियां नाल गप्पां मारन दा सवाल सी, दूजे पासे यारां दोस्तां च बेइज्जती दे डरों घमाण दा बुरा हाल सी, घमाण कहिंदा देख भागवान ने मेरा सन्मान होया, मैं इहनां नूं पार्टी वास्ते घर बुलाया, तू अंदर जाके देख ला अपने घरे कुल्फी गर्मा गर्म वाला भगवंत मान आया, तो कहिंदी तेरे तां इह सारी उमर नहीं मुकणे पुठे पंगे, अपने घर तां इहे रोज ही आउंदे रहिंदे ने 5-7 लफंगे, इहनां कह के सहेलियां नाल चली गई, घमाण कहिंदा कमाल है बाहर सन्मान होया घरे अपमान होया, रब्बा तय की खेड बनाई, बशर्मजा होके भैया भेजा साडे वास्ते होटल तो रोटी मंगाई, पर इहदा मतलब यह नहीं कि असी जनानियां तो डरदे हां, वह गल वख है कि असी उहनां दे अरमानां की कदर करदे हां, असी उहनां दे अरमानां की कदर करदे हां, असी उहनां दे अरमानां की कदर करदे हां।
1: हरमा रेडियो ऑस्ट्रेलिया
2: 24 घंटे 7 दिन।

0: अपने घर आले ते शक कर दिया रेंदी जेड़े घर दे विच शक बढ़ गया समझ ओह घर तबाह हो गया।
1: ओ तेरी गल सही है।
0: हुण बंदा काम कार तो थक्या टुटिया आउंदा इन्हें ना पानी पुछना ना रोटी पुछनी ना चाह पुछनी पहला यही कहना इन्ने बजे तक किथे रहे किधर चले गए सी इन्ने लेट का तो आ गए है? मैं हुण परसों गया दुकान ते किते गुड़ ले।
1: अच्छा
0: उत्थे दो जनानी अपने घर आले दी बदखोई करी आ।
1: हाय हाय की कहंदियां?
0: एक कहंदी मर जे स्टैनो जेड़ी मेरे आले दे दफ्तर च काम करदी आ 11-12 बजे तक ओदे कोले बैठा रहंदा।
1: हाय हाय।
0: दूजी उदों परे।
1: अच्छा
0: कहंदी साडे आला केड़ा घट्टा ऐतवार आले दिन भी बैग चक के चले जांदा कहंदे ओवर टाइम लाउण चले।
1: हाय हाय।
0: आंती हैरान में उदो होया
1: ना कदों
0: जदो कहंदियां भैणे साडे नाल तां विधवा जनानियां चंगियां।
1: ओ किवें?
0: कम से कम उहनां नूं इह तां पता हुंदा ना भी साडे आले है किथे।
1: गलती केहदी है बंदे दी के जनानी दी?
0: ना जनानी दी गलती है संती है ना बंदे दी गलती है रब दी गलती है।
1: ओ किवें?
0: कहिंदे वे जदों रब ने धरती बनाई।
1: अच्छा
0: फिर उहने थोड़ी देर आराम कीता।
1: हां
0: फिर कहिंदे जदों उहने आसमान बनाया फिर थोड़ी देर फिर आराम कीता।
1: अच्छा
0: फिर रब ने कहिंदे बंदा बनाया फिर उहने थोड़ी देर आराम कीता।
1: हां
0: ओदों बाद जदों रब ने जनानी बनाई
1: ना फिर
0: ना रब ने आराम कीता ना बंदे ने आराम कीता।
2: क्लासिक पंजाबी कॉमेडी हरमन रेडियो।

0: ब्लॉक दे इना 60 मिंटा विच तुसी सुन रहे हो पंजाबी दे नवे प्यार भरे गीत, सैड गीत, पंजाबी शायरी, विचार अते पुराना गीत।
1: हार्मन रेडियो 24/7।
2: सैड जां रोमांटिक गीतां दे शौकीनो।

0: सुनो ते सुनाओ अर्बन रेडियो
1: थानू अपने आप नू अते होरां नू उंज दा उंज संस्कार करना पैना है जिवें दे तुसी हो अते जिवें दे होर हन क्यों ना ता ओ बदल सकते हन अते ना ही तुसी बदल सकते हो। विचार यूजी कृष्णा मूर्ति चंगे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: 24/7.
1: तेरे नैना विच अदावां होनगियां, मेरे खापा विच इशावां होनगियां। ना तू ना मैं होवांगे धरती उत्ते, साडे साहां दियां हवावां होनगियां। गेड़ेंगा तू जद वी हल्ट सरापां दा, गेड़ेंगा तू जद वी हल्ट सरापां दा, परियां टिंडां विच दुआवां होनगियां। जद ओह मरियां वैन गवांडां तक पहुंचे, रीचां ते कर रोईयां मावां होनगियां। नाल मेरे तुरके देखी लोक निकाहां वल, कोर दियां सब चार दिशावां होनगियां। टुटेंगा सुक जावेंगा पत्तियां वांगू, नाल रहेंगा छतरी छावां होनगियां। समझ लिया तू जिसनू झखड़ रोईयां दा, समझ लिया तू जिसनू झखड़ रोईयां दा, बिरहा मारे दिल दियां आहां होनगियां। जाचां दे अखर दिल उत्ते लिख के देख, यादां दे अखर दिल उत्ते लिख के देख, पंगतियां मेरा सिर नावां होनगियां। दिल दे विच आस दा बूटा ला के पै जा नूर, दिल विच आस दा बूटा ला के बह जा नूर, आपे सिर तो दूर खिजावां होनगियां। आपे सिर तो दूर खिजावां होनगियां।

0: हार्मन रेडियो 24/7।
1: सेरा क्यों नहीं सजदा, इल्जाम क्यों नहीं आउंदा, सेहरा क्यों नहीं सजदा, इल्जाम क्यों नहीं आउंदा, तेरे दिल दे वरकियां ते मेरा नाम क्यों नहीं आउंदा। चुम चुम के पैर तेरे एक लहर पुछ रही है, चुम चुम के पैर तेरे एक लहर पुछ रही है, तेरी प्यास दी कथा विच मेरा नाम क्यों नहीं आउंदा। किथे तू तप रहा है, किथे तू खप रहा है, किथे तू तप रहा है, किथे तू खप रहा है, हुण मेरी शां च तैनू आराम क्यों नहीं आउंदा। जिथे मैं डाल होना, जिथे तू फुल बनना, जिथे मैं डाल होना, जिथे तू फुल बनना, मेरे इश्क दे सफर विच ओ मुकाम क्यों नहीं आउंदा। रुखां नू फुल आए, नदियां च नीर आया, रुखां नू फुल आए, नदियां च नीर आया,

0: हरमन रेडियो 24 घंटे सत्ते दिन।
1: पंजाबी लोग प्रवासी हो गए ते पंजाब दे विच प्रवासी कामे दे तौर ते आबाद होण लग पए। पावे के इस वहा दे बारे वख वख विचार ने, लेकिन पंजाबी दे सरमौर शायर सुरजीत पात्र साहब ने इस नूं अपनी कविता दे विच कुछ इस तरह लिखा है। पिछे पिछे रिजक दे आया आनंद किशोर, चल के दूर बिहार तो गड्डी बैठ सियाल दा, नाल बथेरे होर राम कली भी नाल सी, सुगड़ लगाई उस दी। लुधियाने दे कोल ही एक पिंड बाड़े वाल विच जड़ लगी ते पुंगरी राम कली दी कुख चो, जन्मी बेटी उस दी ना तरिया सी माधरी। कल मैं देखी माधरी उसे पिंड स्कूल विच, गुत्तां बन के रिबन विच सोहनी पट्टी पोच के ऊड़ा ऐड़ा लिख रही, ऊड़ा ऐड़ा लिख रही बेटी नंद किशोर दी, किन्ना गूढ़ा साक है अखरां ते रिस्क दा। इसे पिंड दे लाडले पोते अच्छर सिंह दे अपने प्यो दी कार विच बै लुधियाणे आम दे, कॉन्वेंट विच पढ़ रहे ए बी सी डी सिख दे पोते अच्छर सिंह दे, किन्ना गूढ़ा साक है अखर अते आकांख्या, पिछे पिछे रिस्क दे आया नंद किशोर।

पेत बारे अफ्रीका दी कहावत है कि जद नदी सुक जावेगी ता सानू सारिया नू ए भी पता लग जावेगा कि मगरमच्छ कित्थे सौंदा है।

0: ब्लॉक दे इना 60 मिनटा विच तुसी सुन रहे हो पंजाबी दे नवे प्यार भरे गीत, सैड गीत, पंजाबी शायरी, विचार अते पुराना गीत।
1: हार्मन रेडियो 24/7।
2: एक चीख उदों दबी गई जद जन्म वेले दादी ने कहा, हुण ता पोते दा मुंह विखा दिंदा, रब पत्थर ही सुट्टी आउंदा। एक चीख उदों दबी गई जद भूआ ने हथों खिडौना खो वीर नूं फड़ा दिता ते कहा, दे मुंडे नूं तेरा बब्बर नहीं भरदा खेड के। एक चीख उदों कुटी गई जद मां ने फेंच गुत एक कह खोल दिती कि कॉलेज पढ़न जानी है कि शकीनी करन, चंगी मत ना पढ़ ला नहीं हट जा। एक चीख उदों कुटी गई जद व्याही नूं घरवाले ने कहा, सोशल मीडिया बंद कर सारे। कहा ना गया कि तू ही कर दे बंद आप दे। एक चीख उदों कुटी गई जद सस आखिया कि इस वारी मुंडा चाहिदा है, ना होया ता देख ले। कहा ना गया, पुत नू कह पत्थर ना तरे मेरे अंदर। चीखां कुटियां रह जांदियां, औरत औरत दी दुश्मन बन जांदी है, मर्दां तो वद औरत नू औरत तो आजादी चाहिदी है। गलियां दे पाटन तो पहला सुधरना होएगा।
0: हरमन रेडियो तुहाडे नाल 24 घंटे 7।
3: सैड या रोमांटिक गीतां दे शौकीन हो।

0: हरमन रेडियो
1: 24 घंटे 7 दिन।
2: सत श्री अकाल जी, मैं हां तुहाडा अपना रेशम सिंह अनमोल, ए तुसी सुन रहे हो हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

0: happening in music, culture, community events.
1: Hanuman Radio
2: brings to you the best from UK, Canada, USA, and India.
3: This is a special, something completely different.
0: What's happening in music?
4: Magic comedy.
5: कुछ बोले
6: कौन है भाई सवेरे सवेरे
7: बेचना हूं दबानी की इज्जत नहीं
8: सवे असी भी कोई कच्चिया गोलियां नहीं खेडिया
7: जरा वो कंजर बाहरों आया ओ संग कर लो
9: Can I go now?

जो गल अज कही दोबारा ना कही, मैं कहा ना जे तू नहीं तो मैं नहीं, फिर भी तेरी जिद है तेरी मर्जी है, अग हिजरां दी आपे असीं बाल लवांगे।

0: मेरे नाल जीना तो दूर मेरे को बह भी नहीं सकता। गल बस इनी कह सजना तेरी जगह तो हम तू भी लै नहीं सकता। तेरी जगह तो हम तू भी लै नहीं सकता।
1: Harman Radio
2: 24/7
3: कितरे आख दाए टेढ़ी ना हेठ पैरां ते आ जावे किधरे बेगुना करता हां कतले आम मैं बड़ा कुछ हां किधरे कुछ भी नहीं मैं बुलबुले वांग निशान एक आम हां मैं किधरे करता बड़े पते दियां किधरे पता ही नहीं केड़ा बादशाह ते कीती आवाम हां मैं कसूरमंद एक हनेरे दी कंध समझो ना सुबह ते ना शाम हां मैं।

0: माल बा कमाल।
1: जापान दी पैसे बारे एक कहावत है, पैसा दोस्तां नूं भी अजनबी बना सकता है। अते जर्मनी वाले कहंदे हन, पैसे दा फैशन कदे पुराना नहीं हुंदा। लेखक परमिंदर सोडी, किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे, चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

माहौल बारे इथोपिया दी कहावत है कि जिस तरह दी चरागाह हुंदी है उसे तरह दा इस चरण वाला पशुआं दा छुंड हुंदा है।

0: ब्लॉक दे इना 7 मिनटा विच तुसी सुन रहे हो पंजाबी दे नवे प्यार भरे गीत, सैड गीत, पंजाबी शायरी, विचार अते पुराना गीत।
1: हार्मन रेडियो 24/7।
2: बुल्ले शाह जहर वेख के पीता ते की पीता, इश्क सोच के कीता ते की कीता, दिल दे के दिल लैन दी आस रखी, वे बुलिया प्यार भी लालच नाल कीता ते की कीता, दिल नू लग जन रोग ते की करिए, किसे दी याद विच अखियां रोवन ते की करिए, दिल नू लग जन रोग ते की करिए, किसे दी याद विच अखियां रोवन ते की करिए, सानू ते मिलन दी आस रहिंदी हर वेले बुलिया, जे याद ही भुल जावे ता की करिए, अलिफ अग लगी विच सीने दे, सीना तपके वांग तंदूर होया, कुछ लोकां दे तानिया मार दिता, कुछ सज्जन अखियां तो दूर होया, ते एक शीशा लिया सी मैं यार वेखण लई, ओ भी जमीन ते डिग के चूर होया, ते बुल्ले शाह लोकी हस के यार मना लैंदे, साडा रोना भी ना मंजूर होया, साडा रोना भी ना मंजूर होया, दुख दर्दां दा तोड़ भी कोई नहीं, अग पानी दा जोड़ भी कोई नहीं, दुख दर्दां दा तोड़ भी कोई नहीं, अग पानी दा जोड़ भी कोई नहीं, चंगा होवे ता इको ही काफी बुलिया, बहुते यारां दी लोड़ भी कोई नहीं, बहुते यारां दी लोड़ भी कोई नहीं, पढ़ पढ़ किताबां इलम दियां तू नाम रख लिया काजी, हाथ विच फड़ के तलवार तू नाम रख लिया गाजी, मक्के मदीने को माया ते नाम रख लिया हाजी, ओ बुलिया हासल की किता जे तू यार ना रखिया राजी, जे तू यार ना रखिया राजी।
1: Radio 24/7।
3: सैड या रोमांटिक गीतां दे शौकीन हो

हर प्रोग्राम दी जानकारी, रेडियो दी हर गतिविधि ते नजर। ज्वाइन करो साडा फेसबुक पेज facebook.com/harmanradioaustralia जां जुड़ो टेलीग्राम ते telegram.me/harmaninfo। वधेरे जानकारी लई विजिट करो साडी वेबसाइट harmanradio.com।

0: हरमन रेडियो 24 घंटे सत्ते दिन
1: यादा ही ता हुंदिया ने जिंदगी दा सरनामा इना घड़िया प्रौणिया दा की पता कद मुक जाना ओ कीमती पल कदे भुलाया थोड़ी भुलदे ने इना भोलिया लोकां नू की पता कि रूहां दीआं गल्लां की हुंदियां ने प्यार लफ्ज़ ता छोटा ही आ पर डूंगा बहुत आ ओ सुफनियां दी दुनिया किंज ओपरे हुंदिया होया भी अपनी लगती सी ओ सब कुछ जिस ते कोई हक नहीं ओ भी अपना अपना हुण तां कुछ भी नहीं रह गया इन्हां विच्चों दुनिया दे रंगले सायाबान उजाड़ हो गए जापदे ने जिथे कदे पतझड़ च भी बहारां दा झलकारा मारदा सी इन्हां उजाड़ां च भी कदे मैं फुल खिलदे देखे सी कि सच्ची ओ सुफनिया भरी धरती भी हुण ओपरी जिही लगदी आ ओ हसीन जिहे रस्ते लम्मियां वाटां जो कदे मुकायां भी नहीं सी मुकदियां ए रस्ते हुण बहुत छोटे हो गए सच्ची इकल्लापन महसूस हुंदा मैनू जो कदे इकल्लियां होके भी नहीं सी होया साडी संगत ही इन्हां नूं रंगत बख्शदी सी ते जदों तेरे हासियां दी छणकार नाल सुच्चे मोती किरदे सी बीते हुए पल किवें सुपना जिहा लगदा शाला ए सुपना सरगी वेले दा होवे जदों सुपना टुटदा तां मेरे अंदरों भी कुछ टुटदा जिवें आत्मा दा निकाला होण लगा होवे पर दिल विच तस्वीर अज भी उसे तरह जड़ के रखी है मैं जद भी कोई पुछदा तेरे बारे जिंदगी किताब वांगरां खुल जांदी आ आप मुहारे शब्द क्लीयर।

ना शुकरापन बारे चीन दी एक कहावत अनुसार नाटक देखने वालियां विच मुखद दियां सीटां वाले सब तो वध रौला पांदे हन। लेखक परमिंदर सोडी, किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे, चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: हरमन रेडियो
1: 24 घंटे 7 दिन।
2: रोना तोना ते क्यों सानू ते भाग्यों विच फिकरा पट्टी लीर पुरानी वांगू टंग ग्यों विच किकरा ओ टुर ग्यों सानू कल्या छड के टुर ग्यों सानू कल्या छड के दस किवें दिल पर चाहिए लाग्यो जेड़ी अग विच सीने हुन कादे नाल बुझाइए केड़ा रुस्से नाल साडे किन्नो रो रो असी मनाइए आजम यार यारा नू मिलदे असी किन्नो सीने लाइए असी किन्नो सीने लाइए।

0: हार्मन रेडियो
1: 24/7।
2: उन्हें मेरे ते इल्जाम लाया कि मैं उदी रातां दी नींद चुरा ली। फिर उन्हें मेरे ते इल्जाम लाया कि मैं उदी सूरत भुला ली। इल्जाम ता उन्हें मेरे ते ए भी लाया कि मैं उदे दिल ते डाका मारिया। ते इल्जाम ता उन्हें ए भी लाया कि मैं उसकी मत नू भी मारिया। इन्ने इल्जाम लगन तो बाद भी मैं मोहब्बत दियां बहारां च आजाद परिंदे वांग उडारियां मारता रहा। बड़ा अजीब है ना प्यार दा ही कानून। पर आज उन्हें सारे इल्जाम वापस ले ले ते मैनू बाइज्जत बरी कर कहिंदी, सुख तू ता सीरियस ही ले गया, मैं ता बस टाइम पास करती सी। शायद उन्हें मुलजम नवा पाल लिया ते मैं सारे इल्जामा तो बरी होके भी ओदी बेवफाई दी जेल च कैद हो यादां दी सजा कट रहा हां। बड़ा अजीब है ना प्यार दा एक नूं।

0: हरमन रेडियो रेडियो कमाल बा कमाल
1: हिम्मतां लई राह दसेरी जिंदगी हिम्मतां लई राह दसेरी जिंदगी सारयां तों है वडेरी जिंदगी।

0: हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया
1: 24 घंटे 7 दिन।
2: सत श्रीकाल, मैं रोहित कौशिक, तुसी सुन रहे हो हरमन रेडियो।

तुहाडी आवाज, तुहाडी खबर, तुहाडी कल, तुहाडे अंदाज च। आओ बनाइए समाज नू बेहतर। आले दुआले किन्ना कुछ वापरदा है जो खबरां दा हिस्सा नहीं बनदा। खबर ओ जो बेहतर समाज दा निर्माण करे। तां फिर आओ भेजो अपने आले दुआले दियां खबरां। तुहाडी आवाज, तुहाडी खबर, क्योंकि कल इंज बनदी है।

0: सुनोते सुनाओ अर्बन रेडियो।
1: सिखर तो पैर सिर ते मेरा टल चलिया परछावां, कबरां उड़ीक दिया मैनू ज्यों पुत्रां नू मावां। जिंदगी दा थल तपदा कल्ले रुख दी होंद विच मेरी, दुखां वाली कहर चढ़ी वगे गमां वाली तेज हनेरी। मैं भी क्या रुख चंदरा जिन्नू खा गईयां उहदियां छावां, कबरां उड़ेकदियां मैनू ज्यों पुत्रां नू मावां। हिजरां च सड़दे ने सुखे रोट ते सुखियां चूरियां, उमरां तां मुक चलियां पर मुकियां ना तेरियां वे दूरियां। रच रच झूठ बोलिया मेरे नाल चंदरियां तावां, कबरां उड़ीक दिया मैनू ज्यों पुत्रां नू मावां। लोकां मेरे गीत सुन लै, मेरा दुख तां किसे भी ना जानिया, लखां मेरा सीस चुम गए पर मुखड़ा ना किसे भी पछाणिया। अज इसे मुखड़े तो पिया अपना मैं आप लुकावां, कबरां उड़ेक दिया मैनू ज्यों पुत्रां नू मावां। सिखर तो पैर सिर ते मेरा टल चलिया परछावां, मेरा टल चलिया परछावां।

0: इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर जी हां पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा सारा इंडियन फर्नीचर जो भी थानू चाहिदा सब एथो मिलू मंजे धार्मिक फोटोआं चादरां साइकिल चूल्हे दातियां रंबे कई सब कुछ एथो मिलू ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा ओनू वाला फिगर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन अकाल कर लियो ताया जी 0404-000-536 ते वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture
1: अपनी बिजनेस दी तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस दी ऐड देन लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नू स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ
3: ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ
4: ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੰਟੇ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ
5: ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਓਲਡ ਇਜ਼ ਗੋਲਡ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ

0: हरमन रेडियो नो तुसी कई तरीके दे नाल सुन सकदे हो। एप्पल ऐप स्टोर तो तुसी आईफोन आईपैड अते आईपॉड टच ले हरमन रेडियो सर्च करो। एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म ते तुसी गूगल प्ले स्टोर तो फ्री डाउनलोड करो। ब्लैकबेरी नोकिया अते विंडो मोबाइल ले तुसी ट्यून इन ऐप डाउनलोड करके हरमन रेडियो सर्च करो। harmanradio.com ते भी तुसी सुन सकदे हो। कोई भी वाईफाई रेडियो सेट ते भी साडे चैनल उपलब्ध हन।
1: मेरी पसंद दे गीतां दा आनंद माणन दे लई तुसी हो अपनी दोस्त सीमा दे नाल।

0: कोशिशां सदा रहियां ने कि कुछ अजिहा करिए कि साडे आपणियां नूं सदा माण रहे। तुहाडे संग तुहाडे तों तुहाडे लई ही सदा ए आवाज है। बहुत कुछ कर चुके हां, बहुत कुछ करना अजे बाकी है। आओ इस काफले संग दिओ सानू सहयोग, तुहाडी हाजरी साडे लई मायने रखदी है। तन मन धन नाल इस परवाज दे सारथी बनो दोस्तों। हरमन रेडियो तुहाडे सहयोग नूं हमेशा सलाम करेगा। इस दिल पंजाबी दी सुहाणी आवाज पंजाबी नूं स्पोंसर करो। साडी वित्तीय मदद करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां विजिट करो साडी वेबसाइट harmanradio.com।
1: ओल्ड इज गोल्ड समय दे गीतां दा आनंद माणन दे लई जुड़े रहो हरमन।

एक अफरीकी कहावत अनुसार जेड़ा अपने दरवाजे उधार दिंदा है उसनू ठंडी हवा दे बुलियां लई भी तैयार रहना चाहिदा है। चंगे अते सच्चे विचारां लई जुड़े रहो हारमन रेडियो दे नाल।

0: पहरावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। ऊट दा पद ना जमी ना आसमान।
1: जदों कोई बिना सिर पैर तो गप्पा मारे उदों ए अखाण वर्तदे हन।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया।

0: दोस्तों मैं दीप जगदीप ते तुसी सुन रहे हो हरमन रेडियो। हुण मैं हरमन रेडियो ते अपनी आवाज विच पंजाबी साहित विचों प्रसिद्ध कहानियां कवितावां अते अणमुल्ले विचार लेके हाजिर हुंदा हां। मेरियां होर भी रचनावां सुनन लई अते अपने कीमती सुझा देण लई यूट्यूब उपर मेरा चैनल पंजाबी साहित्यक मंच देख सकते हो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी

0: शायरी दे विच बहुत खूब एक ख्याल थोड़े नाल सांझा करदे चलिए कि इस शर्त ते खेडां सज्जन जी इश्क दी बाजी, इस शर्त ते खेडां सज्जन जी इश्क दी बाजी, हारा तां मैं तुहाडा, जित्ता तां तुसी मेरे।
1: तुहाडे मन दी रीज पुगावांगे, मन चाहे असी गीत सुनावांगे, हर मन रेडियो ते।

युद्ध बारे सियाने कहंदे हन कि युद्ध शुरू हर कोई कर सकदा है पर खत्म कोई कोई। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

0: सुनावा अखाण सियाणिया दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा इको आंडा ओ भी गंदा।
1: जदों मापियां दा इको एक पुत्तर नालायक निकल आवे उदों एह अखाण बोलदे हन।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

0: नंबर लिया मैल हूँ जमा कार्ड कताली छब्बी चुरंजा बानवे सत ला भी ठीक है ये तो सीटो सानू सुने जो दुआबे आले आलू सड़ जाते होंगे सड़क ऐसी सीटो सुने
1: अगले अद्धे घंटे सुनोगे।

0: भी चलो काम ते सुनी जाओ हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
1: सुधर मुझसे यार आप भी आए।

गीतां लई कहानी है तू, कुछ क दिनां लई अख दा पानी है तू, भुल तैनू जाऊंगा सुभा मेरा जानदी है।

पिछले कुछ सालां विच जे तुसी अपने किसी प्रमुख विचार नूं त्याग के नवे विचार नूं धारण नहीं कीता तां थानू अपनी नब्ज चेक करवानी चाहीदी है। हो सकदा है कि तुसी मर ही गए होवो। बर्गज गैलट। सोने विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: एक तरफा तो नहीं सी वो मोहब्बत, फिर भी पता नहीं क्यों अधूरी रह गई। एहो जिया होर सोहनिया रचनावां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।
1: ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ।

0: साड़ी अमीर सभ्यता दिया निशानियां।
1: अख ओले पहाड़ ओले, इस अखाण दा भाव ए है कि जेड़ी वस्तु सानू नजर नहीं आ रही ओ नेड़े हुंदी होई भी दूर है।
0: मुहावे अते अखाण साड़ी अमीर सभ्यता दिया निशानियां। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया।

0: बदलाव कुदरत का खूबसूरत नियम है, सो असी बदल रहे हैं ताकि बेहतर कर सकिए। असी आ रहे हैं नवे अंदाज नाल ताकि संवाद होर खूबसूरत बना सकिए। स्टूडियो दे इस पार असी, स्टूडियो दे उस पार तुसी, आओ मिलके जिंदगी दी खूबसूरत जुगलबंदी पेश करिए। तुहाडा सहयोग साडा हौसला, हरमन टीम हरमन परिवार दे संग पूरे मन दे नाल। अगर कुछ बेहतर करना ही ता जिंदगी दा राग है।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा टॉप गीत।
2: लागे ने रोग या बल्ले, कुछ भी छड़न ना पल्ले, नजरां भी कट केड़िया ने। बापू अज अखा पर आईया, तेरे पुत दिया पहली बारी पिंड पहे पाउन लगे।
1: आवी तभी चलो कम ते सुनी जाओ हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया।

0: के दोप में फंसो।
1: चट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जो चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
2: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए।
3: ओ पक्की गल है यार, तुहाडा पिंड कोला तां कम ही इह है, छोटी जी गल पिछे लड़ पैंदे हो फिर कचहरियां च।
4: ओए ओए गल सुनो वड्डिया शहरिया, एवें पेंडू पेंडू कही जांदे, असी पेंडू ना थोड़े शहरिया तो 35 गुणा चंगे होंदे आ।
3: लै चंगे आ, किवें चंगे होंदे हो?
4: ओए साडे पिंडा च आंढ गुआंढ दी गल तां छड्ड, आले दुआले दे पंज पिंडा दा पता हुंदा किहदे नानके किथे ने, किहदी भूआ किथे बैही है। ते आ थोड़े शहरिया दे हर तीजे महीने नानके ही बदल जांदे ने।
3: की मतलब है?
4: मतलब ए किराए ते रहने हुंदे हो, नित जुल्ली बिस्तरा चखी रखदे हो।
3: ओए नहीं नहीं, जो मर्जी है, साडा शहरिया दा लिविंग स्टैंडर्ड मतलब रहन सहन दा तरीका बहुत उच्चा हुंदा है।
4: लै
3: ओए साडे शहरां विच बड़े सोहणे सोहणे घर हुंदे आ, नक्शियां मुताबक घर बने हुंदे आ। आ तुहाडे पिंडां च कहिड़े नक्शे हुंदे आ? जिन्ने पाई उन्नियां बुरजियां। व्याह तो बाद अड हो के एक वंड लो।
4: ओए मैं जानदा थोड़े नक्शियां नूं हैं, ओए थोड़े घर गजां च हुंदे ने, गजां च एवें गल्लां नाल ही बधाए हुंदे ने, ये ड्राइंग रूम है, ये पोर्च है, ये किचन है। ओए जिड्डे जिड्डे थोड़े घर हुंदे ने, साडे पिंड वाले ने आपदे घरां च ओडे ओडे मुर्गियां वास्ते खुड्डे छड्डे हुंदे ने।
3: खुड्डे?
4: हां
3: ये की हुंदे आ?
4: ओए खुड्डे थोनू की पता खुड्डियां दा, तुसीं तां सारी उम्र अपनी घरवाली मूहरे वैसे ही खुड्डे लैण लगे रहने हो।
3: ओए रहण दे, साडा शहरियां दा खाण पीण दा भी टाइम हुंदा।
4: जानदा,
3: ब्रेकफास्ट लंच डिनर हर चीज दा आपो अपना टाइम है। है तुहाडा पिंडा वाले दा कहदा टाइम हुंदा तुहाडा? जदों जी कीता रोटी दे गोड़ रखिया खा लिया।
4: ओए मैं जानदा थोड़े ब्रेकफास्टां नूं, की हुंदा थोड़े ब्रेकफास्टां च? ओए एक मरे जे ब्रेड ते अद्धा घंटा लहू जा लाई जाणगे, मैं जैम लगा रहा हूँ। 10 ग्राम दा ब्रेड खा के कहणगे आज ब्रेकफास्ट हैवी हो गया है। ओए ब्रेकफास्ट हुंदे आ साडे पिंड वालिया दे, छेदी छेदी ब्रेकां ही नहीं लगदियां। 2 कंगणी वाले गिलास लस्सी दे, 2.25 किलो साग ते 5 मक्की दी रोटियां एक बारी खा लो, मुड़के सारा दिन चुल्हे वल देखण नूं जी नहीं करदा। ताइयो साडियां सेहतां हुंदियां ने। आ थोड़े शहरां च किसे बच्चे दे छोटी जी फिंसी हो जाए, सारा टब्बर भज के डाक्टर कोल जांदा है। डाक्टर साहब आप कहें तो मैं ब्लड टेस्ट करवा लूं, कहीं ये कोई एलर्जी तो नहीं? लो दस एक छोटी जी फिंसी तो इन्नी गल बधाई है। आप पिंडां दे बच्चियां दे अद्धा अद्धा किलो दे फोड़े बेशर्म होके आप ही ठीक हो जांदे ने। छड्ड यार दवाई तां की दवाउणी है, रेता ही लाई जांदा है।
5: हरमन रेडियो, रेडियो कमाल।

रहम बारे अलबानिया दी कहावत है कि अग पानी ते सरकारां कोल कोई रहम नहीं हुंदा। विद्या विचारी तां पर उपकारी। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

0: सुनावा अखाण सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा एक म्यान विच दो तलवारां।
1: इस दा मतलब है कि दो इको जिहे तकड़े डाडे बंदे एक थां रल मिल के गुजारा नहीं कर सकदे।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

0: आवाज दी खूबसूरत प्रवास हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ते आप सब दा स्वागत है। रेडियो ते अपने गीतां दी फरमाइश ले तुसी साडे नाल ईमेल अते टेलीग्राम राही जुड़ सकते हो। टेलीग्राम मैसेज करो इस नंबर ते 9197080149। तुसी सानू ईमेल भी कर सकते हो request@harmanradio.com।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी

0: जद करन मैं लग्या अल्फाज उर्दू दे भी थुड़ गए ने पूरी कायनात रखा तेरे कदमा दे विच तेरे नाल नसीब जो जुड़ गए ने तेरे नाल नसीब जो जुड़ गए ने
1: तुहाडे मन दी रीझ पुगावांगे मन चाहे असीं गीत सुनावांगे हर मन रेडियो ते।

0: रब बारे फारसी दी एक कहावत है, रब दी सोटी आवाज नहीं करदी पर जद ओ वजदी है ता इस दी चोट दा कोई इलाज नहीं हुंदा।
1: लेखक परमिंदर सोडी, किताब संसार सिद्ध मुहावरे, चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: साड़ी अमीर सभ्यता दियां निशानियां अपनी पैरी आप कुहाड़ा मारना।
1: इसका मतलब है कि अपनी हत्थी अपना नुकसान करना।
0: मुहावे अते अखाण साड़ी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

बोली अपनी ते कंग माण होना चाहिदा, बोले जदो बंदा ते पछाण होना चाहिदा। सत श्री अकाल, मैं आ तुहाडे सारयां दी अपनी सतिंदर सत्ती, पंजाबी जुबान पंजाबी मां बोली दी सेवा करदा होया, तुसी सुन रहे हो हरमन रेडियो।

0: अपनी बिजनेस की तरक्की लिए तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लिए जा किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नु स्पॉन्सर करने लिए संपर्क करो accounts@harmanradio.com या harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा।

0: नवंबर दिया शामा च चा दा कुट होवे, नवंबर दिया शामा च चा दा कुट होवे, कोसी जी धुप होवे, इस तरह लोचदा हां मैं तेनू। संदली सुपनिया दी बरसात होवे, डूंगी लै गई रात होवे, तेरी फिर ओहो ही बात होवे, इस तरह लोचदा हां मैं तेनू, इस तरह लोचदा हां मैं जिवें तैराक डूंगे पानिया नू। रब दा खेल होवे, इस तरह अजमेल होवे, जो बिरखा ते तरेल होवे, किस तरह दा हां मैं, की सोचदा हां मैं तेनू, लोचदा हां। जो बिरखा ते तरेल होवे, किस तरह दा हां मैं, की सोचदा हां मैं तेनू, लोचदा हां। जिवें डुब रही किश्ती चों खुदा नू हाक मारदा, मेरे अंदर फैलिया चल होवे, तेरी सीधी साधी गल होवे, जिस च सौ फरेब वल होवे, उस झगड़े दा ना कोई हल होवे, बस इंजी सोचदा हां मैं तैनू, लोचदा हां मैं। कुछ रोशनी तां होवे, कुछ तां ही रात सरके, गलियां च यार आए तलियां ते दीप तरके, कुछ लोक रंग लभदे बदरंग हो गए ने, रखदे जो कापियां च तितली दे परक उतरके, आवो जवाब देवो कोई सवाल आया, जेलम चनाब रावी सतलुज ब्यास तरके, के पागल हनेरियां नू उपदेश कौन देवे, सब पाक पुस्तकां दे उड़दे पए ने वरके, सब पाक पुस्तकां दे उड़दे पए ने वरके, के जिवें टिके पानियां च कोई पत्थर मारदा है, जिवें टिके पानिया च कोई पत्थर मारदा है, बनेरे ते दीवा जग रहा होवे, तू इस तरह मग रहा होवे, फिर भावे सब कुछ ही मुक जावे, ते समा रुक जावे, खुद तो बचन लई खुद नू नोचदा हां मैं, पर तैनू लोचदा हां मैं, जिवें कोई जुगनू दी रोशनी च अपनी शनाखत लभदा है, जिवें कोई जुगनू दी रोशनी च अपनी शनाखत।
1: तुहाडे मन दी रीज पुगावांगे, मन चाहे असी गीत सुनावांगे, हर मन रेडियो ते।

खुशामदी बारे यिद्दीश दी कहावत है कि खुशामद करन नाल दोस्त बनदे हन अते सच बोलन नाल दुश्मन। सुने विचारां दे अंग संग

0: आओ सुनावा खान सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा पैड़े पैड़े यार मेरी फतो दे।
1: जदों किसी बंदे दे यार बेली माड़े चाल चलन वाले होण तां ए अखाण वरतदे हन।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

सत श्री अकाल, मैं हां जिमी शेरगिल ते मेरे वालों आई विश हरमन रेडियो अ वेरी वेरी सक्सेसफुल इनिंग्स, क्योंकि उन्होंने शुरुआत हुई है। तुसी सुन रहे हो थोड़ा अपना हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

0: केड़े मंत्री ने कीता एक बार फिर लोकतंत्रता नु नीलाम ते केड़ी बॉलीवुड हस्ती दे प्यार दे चर्चे हो गए आम। इस सब नाल सानू जानू करवाएगा तुहाडा अपना हरमन रेडियो। तो जुड़ो हरमन रेडियो दे नाल ते सचेत होवो अपने आले दुआले बारे, अपने देश बारे, विदेश बारे। इत्थे तुहानू मिलणगियां ना सिर्फ खबरां बल्कि खबरां दी मरम्मत भी, सिर्फ ते सिर्फ तुहाडे अपने हरमन रेडियो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी।

0: विच तुसी मिले असानू असा ता गल वकड़ी पाई निरा नूर तुसी हाथ ना आए साड़ी कंब दी रही कलाई ता चरना ते सीस निवाया साड़े मत्थे छो ना पाई तुसी उच्चे असी नीवे सा साड़ी पेश ना गई आकाई फिर लड़ फड़ने नू उठ दौड़े हाय लड़ ओ बिजली लहरा उड़दा जांदा पर ओ अपनी छो सानू गया लाई मिट्टी चमक पई ए मोई ते तुसी लूआं विच लिशके बिजली कूंद गई थर्रांदी हुण चका चूंद है शाई सुपने विच तुसी मिले असानू असा ता गल वकड़ी पाई निरा नूर तुसी हाथ ना आए साड़ी कंबदी रही कलाई रचना भाई वीर सिंह आवाज सरबजीत सिंह
1: तुहाडे मन दी रीझ पुगावांगे मन चाहे असी गीत सुनावांगे हर मन रेडियो।

मुस्कुराहट बारे अफ्रीका दी कहावत है कि दो बंदियां दी कट्टो कट दूरी नू मुस्कुराहट कहा जांदा है। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

तुम सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया का पल्ला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो।

वतीरे बारे अफरीकी कहंदे हन कि प्लेट टुटण ते कौली नूं हसना नहीं चाहिदा। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

0: चूड चढ़ जाए पतझड़ वांगू, मेरा चूड चढ़ जाए पतझड़ वांगू, खिड़ेगी हमेशा हकीकत खिड़ेगी। इसलिए असि लैके आने तोड़े लिए ताजा तरीन सोहनिया खुशनुमा सचिया सुचिया खबरां दा सिलसिला। देश ते विदेश दीआं खबरां ते जानकारियां दी अपनी डेली डोज लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल, जो दवेगा तुहानू तुहाडे कल अज ते कल दी पूरी खबर। तुहाडा अपना हरमन रेडियो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुणोगे तुसीं आहा।

0: किसी ने थोड़ा जिहा वक्त दिता सी मैनू ते मैं उनू इश्क समझ के अज तक साम के रखिया होया। एहो जिया होर सोहनिया रचनावां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।
1: तुहाडे मन दी रीझ पुगावांगे, मन चाहे असीं गीत सुनावांगे हरमन रेडियो दे।

0: आओ सुनावा खान सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा इश्क परहेज मोहम्मद बख्शा कदे नहीं रल बहंदे।
1: भाव ए है कि जदों कोई इश्क मुहब्बत विच गलतान हो जावे तां उस दे लई शर्म हया कोई अर्थ नहीं रख दे।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

0: हेलो सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सुवी महेंद्रू, ते तुसी सुन रहे हो हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया, दिल पंजाबी जस्ता पंजाब।
1: जिंदगी जन हब साडी पूरी आ शबाब साडी पूरे आ स्वाद बस नहीं दे आखर हब साडी मत्थे ते तिहूड़ियां तू जिन्नी।

आदर्शवादी जो अपने उच्चे भरमी मनारिया तो हेठा उतरते हैं तो वह सीधा गंदे नालिया जा डिगते हैं। विचार तीरसल लुगान चंगे सोहने विचार जुड़े रहो हरमन रेडियो के नाल।

नमस्कार, सत श्री अकाल। हरमन रेडियो सुनने वाले तमाम श्रोताओं को मैं उदित नारायण की तरफ से मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: सत श्री अकाल जी। ए हरमन रेडियो है अते हरमन रेडियो दा तीसरा पड़ा चल रहा है। सन 2000 विच आस्ट्रेलिया दे सिक्की दे तुरे पिंड बुलगुलगा तो 2 घंटे दे प्रोग्राम दी शुरुआत हुई सी। सन 2005 तो लैके 8 तक सिडनी अते मेलबर्न दे विच FM दे साइड बैंड ते हैरिस पार्क स्टूडियो पैरामेटा तो हरमन रेडियो चलिया। सन 2011 विच हरमन रेडियो नूं पंजाबी हिंदी दी पहली ऐप राही आईफोन ते एंड्रॉयड ते लांच करके वर्ल्ड वाइड हो गया। जुड़े रहो हरमन रेडियो।
1: जे देखिए ता रब ने मनुख नूं उचेरी मेहर नाल किरत करन दे काबिल कीता है। चौपाइयां दी लम्मी कतार विच्चों केवल मनुख नूं ही पिछलियां 2 टंगां ते खड़ा करके अगलियां नूं बाहां बना के कम करन लई वेलियां कर दिता है। फिर हथ ने अंगूठे नूं उंगलां तक पहुंचाण दी योग्यता दे दित्ती तां जो मनुख संद फड़न ते वर्तन जोगा हो जावे। जद सानू रब ने आप मेहनत जोगा कीता है तां असी कितनी क मेहनत करदे हां, इस दी जवाबदेही साडे उपर लाजम हो जांदी है। विचार जसवंत सिंह नेकी, किताब गुरमत मनोविज्ञान। सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

संत रविदास जी बनारस रहिंदे होए भी गंगा नहाउण नहीं सन जांदे। एक साखी तां स्पष्ट है कि संत कहिंदा है, भगत जी आओ गंगा इशनान करवा लियाईए। ओह कहिंदे हन मेरी चमड़ी लै जाओ। असल विच मन निर्मल करन लई बाहरली गंगा कारगर नहीं है, मन अंदर है, मैल अंदर है, जल भी अंदर ही होवेगा। मन है विचार, मैल है विचारां दी, इसलिए इसनूं धोण लई जल भी विचारां दा ही होवेगा। ओ जल है गुरबाणी, ओ जल है सतगुरु दा शब्द। विचार ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना, सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

सरगुण दुनिया विच विचरदे होए असी गुर शब्द दे अखरी स्वरूप गुरबाणी दे लड़ लगना है अते भाव भावनी नाल पाठ कीर्तन ते विचार करनी है जो कि आत्मक पंध लई अत जरूरी है। गुरबाणी पाठ कीर्तन ते विचारां लैके आप सरबत संगत की सेवा विच हाजिर है तुहाडा अपना हरमन रेडियो प्रोग्राम गुरबाणी विचार दे राहीं।

गुरु साडे अंदरों रजा दी भाषा विच बोलना चाहुंदा है, पर असी आप ही इन्ना बोली जांदे हां कि असी गुरु दी वारी ही नहीं आउण दिंदे। साडी सियाणप सानू चुप ही नहीं करन दिंदी। असी गुरु नाल भी सवाल जवाब करदे हां, असी गुरु दे हुक्मां ते बहस भी ते किंतु भी करदे हां, असी गुरु दा वचन भी पलटदे हां। विचार यानी जसवंत सिंह परवाना, सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

रोजाना सरवण करदे हो प्रोग्राम गावो सच्ची बाणी। इस प्रोग्राम विच नितनेम शब्द कीर्तन गुरबाणी विचारां अते सिख इतिहास पेश

0: जागे अणख चमकौर नू वेखदे आई सुत्ता जिथे अजीत जुझार तेरा टठे हुए सब दिल खलो जांदे चिणिया कंधा विच वेख परिवार तेरा। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह चार साहबजादे माता गुजर कौर ते होर समूह सिख सिंह जो उस मौके शहीद होए उन्हां समूह शहीदां दी शहादत नू कोटानकोट प्रणाम करदा। आओ उन्हां दे उच्चे सुचे जीवन नू आधार बना के अपना किरदार भी सुचा ते सुचा करन दा यतन करिए।
1: गुरु रूप खालसा जी जदों वजीर खान नू जापदा सी के गुरु साहिब तों आनंदपुर खाली करा के सरसा कंडे सिंघां नू शहीद करके चमकौर साहिब विच वड्डे साहिबजादे अते सिंघां नू शहीद करके सरहंद विच माता गुजर कौर अते छोटे साहिबजादियां नू जिउंदे नीयां विच चिणवा के दो पठाणा नू गुरु साहिब ते वार करके शहीद करन भेज के हुण लम्मियां तान सुख दी नीर सोवांगा। पर उस नू पता नहीं सी के उसदा काल नेड़े ही आ रहा है। उस नू पता नहीं सी के गुरु जी ने तेरे तो सारे किते जुल्मां दा हक लैण लई एक बरागी नू अमृत छका के सिंह सजा के पंज तीर पंज सिंह दे के पंजाब वल सारे किते जुल्मां दा हक लैण लई तोर दिता है। उस बंदा सिंह बहादुर ने गुरु साहिब दा स्नेहा माझे दुआबे ते मालवे दे सिंघां नू भेज के बुलाया। उस खालसा फौज ने जिवें सरहंद दे सूबे इस दे पिठुआं ते दे हमायतियां कोलों गिण गिण के बदले ले

बाने वाला सिख गुरु दा तुरदा फिरदा निशान साहिब है, पर निरा निशान साहिब ही होवे अंदर बाणी दा प्रकाश ना होवे ता असी समझदे हां कि एवें किसे थां ते कब्जा करन वास्ते निशान साहिब लगाया गया है। सचखंड हरिमंदर साहिब बहुत देर पहले बन गया सी, फिर बाणी दा प्रकाश होया सी, फिर निशान साहिब लगे सन। 230 साल पहला सिख दे हिरदे विच बाणी वसाउण दा उपराला कीता गया सी, फिर इस नूं बाणा दित्ता गया सी। विचार ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना, सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

0: अपने बिजनेस की तरक्की ले तुसी भी हरमन रेडियो दी सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो।

0: गुरबाणी दे नाल प्यार रखन वाले हरमन रेडियो दे समूह श्रोतियां नूं दलजीत सिंह मेहता वल्लों प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आस्ट्रेलिया सिडनी समय अनुसार अमृत वेले दे 5 बज चुके ने, तां मैं अपने वादे मुताबक हाजिर हां जी अमृत वेले दा अमृतमई प्रोग्राम लैके गावो सच्ची बाणी। इस प्रोग्राम विच तुसी करीब 3 घंटे आनंद माणोगे। गुरमत विचारां, गुरबाणी कीर्तन ते नितनेम दी बाणी जप दे। तां आओ रोजाना दी तरह प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां अमृत वेले दी नितनेम दी बाणी जपजी साहिब दे नाल। इस तों उपरंत आप जी सरवण करते रहोगे गुरबाणी कीर्तन ते गुरमत विचारां।
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचै सोच न होवी जे सोची लहवार चुपै चुप न होवी जे लाय रहां लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सह सियान पाला खोए ता एक न चले नाल। किव सच्यारा होई है किव कूड़े तुटे पाल। हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न केहा जाई। हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है। एक न हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पुआई है।

सुनै सेख पीर पातशाह, सुनै अंधे पावे राह, सुनै हाथ होए असगाह, नानक भगतां सदा विगाह। सुनै दुख पाप का नास, मन्ने की गत कई न जाय, जे को कह पिछे पछताय, कागद कलम

जे को कह करै विचार, करते कह करना नाही समार। तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझै होवै सचियार, तौलै उपर केता पार। धरती होर परै होर होर, तिस्ते पार तलै।

एक बार जो तुद पावे साई पलिका तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर।

कार जो तुद पावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवट हत्या कुमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेच मल पाख खाहे।

जो तुद पावै साई पलिका, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कै सिर पार होए, अखरी नाम।

जो तुद भावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, परिये हाथ पैर तन दे पानी तोता उतरस खे, मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लिये ओ तोए, परिये मत पापा कै संग ओ तो पै नावे के रंग, पुन्नी पापी आखन नाए कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। तीर्थ तप दया दत दान, जे को पावे तिलका मान, सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतर गत तीर्थ मल नाओ, सब गुण तेरा मैं ना ही कोय, विन गुण कीते भगत न होए, स्वस्थ आत बाणी परमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ, कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन सिर उत्ती मां कवन, जित हुआ आकार, वेल न पाई।

पाताला पाताल लख आकाशा आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सैंस अठारा कहन कतेबा असलू एक तात लेखा होए तां लिखिया लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत न पाईया नदियां अत्ते वाह।

मनो न विसरै, अंत न सिफति कह न अंत, अंत न करना दे न अंत, अंत न वेखन सुन न अंत, अंत न जापै क्या मन मंत, अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारावार, अंत कारण केते बिल लाहे, ताके अंत न पाए जाए, ए अंत न जाने कोय, बहुता कहिया बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, ए वड ऊंचा हो।

मूर्ख खाई खाए केतिया दुख पुख सदमार, ए बेदात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए जे को खाएक आखन पाए, ओ जाने।

नानक पातशाही पातशाह अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापारिये अमूल भंडार, अमूल आवे अमूल ले जाए, अमूल पाए अमूला समाए, अमूल धर्म अमूल दीवान, अमूल तुल अमूल प्रवान, अमूल बख्शीश

अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत वे आई तीन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावे।

आसन लोए लोए पंडार, जो कुछ पाया सोए कावार, कर कर वेखै सिर जनहार, नानक सचे की साची कार, आदेश तसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस, एक दूजी पौ लख होए, लख होए लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया, एक नाम जगदीश, ए तरह पत पवड़िया, चढ़िया होए अकीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस, नानक नदरी पाईया, कूड़ी कूड़ै ठीस, आखन जोर चुपै नहीं जोर, जोर न मंगन दे न जोर, जोर न जीवन मर न जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती था प्रकी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिन के नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापे जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का खो करम, केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते ब्रह्मे कार्त कड़िया, रूप रंग के वेस, केतिया करम भूमि मेर, केते केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खानी केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरति सेव केते, नानक अंतरांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद बनोद कोट आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै कारत कड़ी है बहुत अनूप, तां कियां गल्लां कथियां ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, तिथै कड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथै कड़ी है सुरां सिदां की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोत महामल सूर, तिन मैं राम रिया भरपूर, तिथै सीतो सीता मैं मामा, तां के रूप न कथने जाए, ना ओ मरे ना ठागे जाए, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसे के लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसे नंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै

0: कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई। रूपहीन बुद्ध बलहीनी मोय पर देसन दूर ते आई। रागौड़ी विचों पंचम पातशाह जी दे ए पवित्र बोल। मेरे विच ओ केड़ा गुण है, ए जीव वल्लों एक अरदास है कि जीव तेरे विच केड़ा गुण है जो उस प्राणा दे राखे अकाल पुरख ते नाल तेरा मिलाप हो जावे। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखे बिख खाहे। माया मोह परम पै पूले सुत दारा स्यो प्रीत लगाहे। फिर कोई साडा रूप नहीं है, निमाने जे रूपहीन बुद्ध बलहीनी, ना तो बुद्धि है ना ही साडे विच कोई पावर ताकत है। पर एक गल है, अरदास सब तो वड्डी चीज है। सतगुरु कहिंदे इवें क्या कर मोहे पर देसन दूर ते आई। बड़ा लम्मा गेड़ा मैं लाया, 84 लख जूना दा गेड़ा लाके तेरे दर ते पहुंची हां। ए जीव आत्मा जदों इवें उस मालिक नाल अभेद होण दी गल करेगी तां जरूर इसकी सफलता होएगी। तां आओ उस मालिक अगे बेनती जोधड़ी अरदास करिए, सतगुरु अपने चरणा नाल जोड़ लो।
1: ना उड़ीकी दादीए दी कामयाबी तो बाद गुलशन कुमार पेश करदे हन भाई मनिंदर सिंह श्रीनगर वालियां दी एक होर धार्मिक रचना, उना दी ही आवाज विच विछड़े परावां दी कहानी, जो चमकौर दी गाड़ी दे अंदर दे हालात बयान कर दिए। मनुखता नू आजादी दा फुरमान देन वाले कलगियां वाले पाशा अपने 35 सिंघां ते 2 साहिबजादियां नाल चमकौर दी धरती उत्ते कच्ची गड़ी विच दुश्मन दी 10 लख फौज दे घेरे विच घिरे होए किसे अनोखे इतिहास दे सिरजना करन जा रहे हन। हनेरी काली अते ठंडी रात विच जद सारा जहान नींद दी गोद विच थक सुत्ता पिया है, गुरु जी दी ए छोटी जिही फौज 1.25 लख से 1 लड़ाऊं दे वचन पूरे करन दी तैयारी कर रही है। इस फौज विच बैठे हन गुरु जी दे 2 वड्डे पुत्र बाबा अजीत सिंह जी ते बाबा जुझार सिंह जी, जिन्हां ने कल सवेर नू 5-5 सिंघां दे सरदार बन के शहीदी पाउनी है। इन्हां नू जिथे एक पासे शहीद होके अपने पंथ दा नां उच्चा करन दा चाह है, उथे दूजे पासे अपने विछड़े 2 वीरां दी याद बार बार दिल नाल टकरा रही है। छोटे जेहे फतेह सिंह ते जोरावर सिंह नू अपनी गोद विच खिडाया सी, वो बचपन दियां खेड़ां, वो प्यार, वो शिकायतां लाउनियां, रुस जाना फिर मन जाना, एक एक याद अखां सामने आ रही है।

0: करतार है। इस तो अगे साडे सतगुरा ने भी किरत करन दी ही मिसाल कायम कीती। गुरु नानक साहिब ने बचपन विच मज्जां चारियां, जवानी विच मोदी खाना चलाया ते वडेरी उम्र विच वाही कीती। गुरु अंगद साहब ने वाण बट के वट्टिया होया वाण बेच के अपनी उपजीविका दा साधन कीता। गुरु रामदास जी ने घुंगणियां उबाल के वेचण दा काम कीता। इउं उन्हां ने दसां नौहां दी किरत नूं अध्यात्मक वरदान दिता। विचार जसवंत सिंह नेकी, किताब गुरमत मनोविज्ञान। सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।
1: जदों हिरदे विच अकाल पुरख दा वासा हो जावे तां इह समझ लैणा कि साडी पूर्वले भाग जागे ने। इस विच साडी चतुराई जां साडी सियाणप नहीं काम आई। जिस मालक ने यह भाग जगाए आ ना, ओदी वड्याई करिए। किवें करिए? क्योंकि वह तो बेअंत है, पूर्ण है, सुखां दा दाता है, सहज अवस्था देण वाला है। पर जीव तो सानू एक मिली है, उहदे नाल किहड़े किहड़े उहदे गुण गाईए। पंचम पातशाह दे यह बोल राग राम कली विच इउं दर्ज ने, ग्रह लाल आए पुरब कमाए, ता की उपमा क्या कहना। बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता, कमल रसना गुण पना। तुकारी बारह माह विच बाबा नानक दी वड्याई करदे हुए इउं बख्शिश होई है। प्रीतम गुण अंके, सुन प्रभ बंके, तुद पावा सरनावा, गंग जमन तै बेणी संगम, सात समुंद समावा। जो ही ये जीव आत्मा दी सांझ उस मालिक नाल, उस अकाल पुरख नाल हुंदी है, ते इस ते सारे चिंता झरोखे दूर हो जांदे। पर एक प्रभु अपनी मेहर करे ता ए सारा कुछ हुंदा है। छोड़ चिंत अचिंत होए, बहुत दुख ना पाया, नानक दर्शन पेख जीवे, गोविंद गुण निध गाया। गोविंद गुणा दा खजाना है, ते उन्नु वेख के भी खुशी हुंदी है, उदे गुण सुन के भी खुशी होवे। ता एहो ही ता एक पूर्वले भाग जागण वाली गल है। जदो चंगे भागां वाला सूरज चढ़ता है ना, तो समझो कि वह सच्चे सतगुरु नाल मेल हो गया। चंगे भागां दी इह वी निशानी है कि हिरदे विच्चों परमा दा पर्दा लै जांदा है, जीवन आनंदमयी हो जांदा है। पूरे भाग सतगुरु मिले जां भागे का उदो होए, अंतरों दुख भरम कटिए सुख प्राप्त होए। इहो वड्डे भाग हन जो सतगुरु दी सेवा विच लग्या प्राप्त हुंदे ने। सतगुरु सेवे लग्या कड़ रतन देवे परगास, धन वड भागी वड भागिया, जो आए मिले गुरपास। ता आओ गुरु प्यारियो, अकाल पुरख नूं हिरदे विच वसा के अपने वड्डे भागां नूं धनता योग बनाईए। राग बिलावल विच्चों धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दा बख्शिश एक शब्द जो शंतां विच्चों है, ते तीसरे शंत दा पंजवां पदा है। आओ इस नूं शब्द कीर्तन विच सरवण करदे हां। शब्द कीर्तन सरवण करा रहे ने भाई साहिब भाई अमरीक सिंह जी जख्मी, ते शब्द दी टेक है तन तन हमारे भाग।

0: सत्कार जो सात संगत जो जिवें मैं सवेरे भी बेनती कीती सी हुण फिर करदा हां कि गरीबां दे सच्चे सुच्चे पक्षी हकीकत विच जिन्हां नूं कह सकदे हां कि निवाणां दे माण हन, निताणां दे ताण हन, न्योटियां दी ओट हन, वे वसीलियां दे वसीले हन, बेपनाहां दी पनाह हन। धन सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे प्रकाश दिहाड़े दियां आप सब नूं वधाईयां। इसलिए खुशी दा प्रगटावा अजहारे मुसर्रत शादमान ने मैं अर्ज करदा हां कि सारी संगत बुलंद आवाज दे नाल फतेह गजाओ जी। वाहिगुरु जी का
1: खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
0: कुछ मेरा तौखला दूर करने वास्ते एक बारी जेडी पिछे संगता बैठी ना वह भी कृपा करो, पर अगदियां भी बोलो जी। वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह।
0: नी दिल अखियो सदर ला लो, ना जाड़ा मुड़ लहे के ना। ऐद लखियो सदर ला लो, खिड़े चमन विच नाला बहंदा, ना जाना मुड़ वहे के ना। नींद लखियो सदर ला लो, ना जाना मुड़ लहे के ना। इस जीवन दा की परवासा आउंदी रुते रहे के ना। इस लई एक बारी फिर का कृपा करो उचारो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। ऐ शब्द जो आपके दास गान लगे ने मेरे बहुत ही परम प्यारे आदर योग सर हरजाप सिंह जी औजला जी ने सिर से आके कहा कि तुहाडे पिता जी की एक बंदिश है ते ओ जे सुना दो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं अज शाम नू इंडिया जाना है ते मैं ए बिलावल दी धुन शब्द दी तुका अपने जहन विच वसा के जावांगा तां मेरे वास्ते गुरु अंग संग वरतदा रहेगा। मैं कह जी बिलावल दिया ते कई बंदिशां सन पिता जी चाचा दियां, पर तुसी दस सकदे आ? और यकीन करो सात संग जी इन्हां ने उसे तरह जिवें असीं गाण लगे हां इस तरह सुना दित्ती है। गल बड़ी मौके दी है। तन तन हमारे भाग, घर आया फिर मेरा। सासी के सारे जन रसना पवित्र कर दे तो कहो जी। तन तन हमारे भाग, घर आया फिर मेरा। सोहे बंक दुहार सगला मन हरा। इस नू बलावर राग अंदर ही जिमें मेरे पिता दी बंदिश है वो सरवण करो जी। तन

अंच चोर बसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा अमृत लूटी मनमुख नहीं बूझे कोई ना सुने पुकारा अंधा जगत अंधवर तारा बाज गुरु गुबारा। राग सोरठ विच धन गुरु अमरदास महाराज जी दे इन्ना पवित्र बोला विच साडे लई इक वड्डी सिख्या है। दुनिया उत्ते जिन्ने भी जीव जंतु ने वो किसी ना किसी एक वकार विच दो वकार विच घिरे हुए ने, पर यह मनुख है जिहड़ा पंज वकारां विच घिरिया होया काम क्रोध लोभ वो अहंकार। ते ए पंजे वकार दिन रात एदे अंदरों जो अमृत रूप है बोल ने बाणी है उन्हों लुट रहे ने, ते कोई पुकार भी नहीं सुन रहा। कारण की है? सारा जगत अंधा होया फिरदा है, अंधे वर्तारे विच है, ते गुरु दे लड़ लग्यां तो बगैर हर पासे गुबार अनेरा है। आओ इस अनेरे विचों बाहर निकलिए, ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी पवित्र बाणी विचों एक शब्द सरण करिए।

जो अमृतसर शहर विच सुशोभित है। अमृतसर पाव अमृत दा सरोवर। इस पवित्र शहर दी मोड़ी धन गुरु रामदास जी ने गुरु अमरदास जी दे हुक्मां नूं मंनदे होए सन 1577 विच रखी सी। जे कुछ हवालियां दी गल करिए तां इह जमीन नेड़ले पिंडां जिवें तुंग आदि दे पिंड वासियां तों खरीदी गई सी। पहले पहर इस शहर दा नाम गुरु का चक दे तौर ते प्रचलित होया, पर बाद विच इसे शहर नूं रामदासपुरा नाम नाल करके जाणिया जाण लगा। ते क्या जांदा है कि अमृत सरोवर दी खुदाई तों बाद इह नाम अमृतसर करके दुनिया दे नक्शे ते प्रचलित होया। गुरु साहिबान ने इस शहर विच वक वक काम करन वाले किरतियां नूं लिया के वसाया, अते जो बाद विच आपां बाजारां दे नाम देखते हां उन्हां नूं किते करके जाणिया जांदा है, भाव जो किरत करदे सन जिहड़ा वी कोई काम करदा सी उह किता बाद विच मशहूर होया। 1635 ईस्वी विच जदों गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं कीर्तपुर वाले स्थान ते प्रस्थान करना पिया ता इह शहर दा इंतजाम पिरथिए दी औलाद कोल आ गया, इउं कह लो कि महंता कोल आ गया। 18वीं सदी विच इस शहर दे बड़े उतरा चढ़ा देखे सन। मुगल हाकमा ने अफगाना ने इस पवित्र शहर नूं मलिया मेट करन दी कोशिश कीती। सन 1765 विच जदों सिख मिसलां दी स्थापती होई तां इस शहर दा इंतजाम मिसल सरदारां दे कोल आ गया। हौली हौली इह शहर खालसे दी राजधानी वजों जाणिया जाण लगा। महाराज रणजीत सिंह जी वेले दरबार साहिब दे गुंबदां उपर सोने दी चाल फिराई गई ते आम लोकां दी भाषा विच इस नूं गोल्डन टैंपल करके जाण लगा। महाराज रणजीत सिंह ने इस शहर विच गोबिंदगढ़ किला भी बनवाया। इस शहर विच दरबार साहिब तों अलावा श्री अकाल तख्त साहिब, दीवान हाल मंजी साहिब, रामसर, शहीदी अस्थान बाबा दीप सिंह जी, बुंगा बाबा अटल राय जी, बबेकसर आदि गुरुद्वारे सुशोभित हन। ते इस तों अलावा हिंदू मत दा मशहूर स्थान दुर्गियाना मंदिर भी इस शहर विच मौजूद है। सिख दुनिया दे किसे भी खिते विच वसदे होण, किसे देश विच वसदे होण, उन्हां दी सदा इको तांग हुंदी है कि शहर अमृतसर विच आके दरबार साहिब दे दर्शन दीदारे करन। वैसे भी पाकिस्तान दी सरहद वाले पास्यों ते भारत दा एक बड़ा वड्डा व्यापारिक शहर है ते दूर दूर तक इत्थों व्यापार जांदा है। तां आओ इस पवित्र शहर दे बानी गुरु रामदास जी दा जिहड़ा उच्ची शख्सियत दा दृष्टांत भाई गुरदास जी ने दिता है उस दे संबंध विचों उन्हां दी रचना विचों शब्द कीर्तन सरवण करदे हां। ते इह शब्द नूं गायन कर रहे ने भाई साहिब भाई कमलजीत सिंह ते उन्हां दा जथा। शब्द दी टेक है, बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे, पूरन ताल खटाया अमृत सर।

0: भाई गुरदास जी दे कथन अनुसार सिद्धा ने कहा कि गुरु नानक देव जी तुसी बड़े बड़े पुरख प्रगट होए हो, तुसी कलयुग विच रूहानियत दी जोत शब्द दी जोत जगाई है। इस कलयुग दे चक्कर दे विच असी रूहानियत दा दीवा जगाउण दा जतन करदे हां, ओ बुझ जांदा है, पर तुसी इन्नी हनेरी विच शब्द दी जोत जगा दित्ती है जिस तो सदा वास्ते ही तुहाडी सिक्खी रोशनी लैंदी रहेगी, ए तुहाडी वड्डी कमाई है। विचार ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना, सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।
1: गुरु प्यारियो, साडे विच्चों बहुत सारे गुरमुख प्यारे सुखमनी साहिब जी दी बाणी दे नेम प्रेम नाल जाप करदे होणगे। बड़ा सत्कार है नानक नाम लेवा संगतां विच इस बाणी दा, भावें कि यह बाणी 24 अष्टपदियां दा एक बड़ा ही निराला जोड़ है जिस विच पुरातन मिथां दे तोड़ नूं सखैल शैली ते बोली विच समझाउण दा सतगुरां ने उपराला कीता। इस बाणी विच्चों थोड़ी देर विच आपां एक शब्द सरवण करना है जो सुखमनी साहिब जी दी 20वीं अष्टपदी दा 5वां पद है। इस अष्टपदी दी शुरुआत मेरे साहिब एक श्लोक नाल यूं करदे ने, फिरत फिरत प्रभ आया परिया तव शरण आए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। कर्मकांडां दी इस दलदल विच असी भटकदे भटकदे मसां ही बाहर निकले हां, हे अकाल पुरख इस भटकना तो बाद तेरी शरण विच आ गए हां, बेनती है कि तू शरण आया नूं अपनी भगती दी बख्शिश कर। हुण इस तों अगे जदों सुखमनी साहिब दी इस अष्टपदी भाव 20वीं अष्टपदी दी आरंभता हुंदी है तां सच्चे पातशाह सेवक नूं जाचना करन दी जात दसदे ने की मंगिया जावे मालक कोलों, यह दर्शाया गया है। जाचना करन वाले उपर प्रभु दी मेहर दृष्टि हुंदी है ते फिर इस हिरदे विच उसकी जोत दा प्रकाश हो जांदा है। फिर शुभ मनोभावना वाले सारे कारज पूरे होण दा समा आउंदा है। शुभ भावना है नाम विच लीन होण दी, जिस मालिक ने सब कुछ दिता है उस नूं आपां वसारीए क्यों। 5वें पदे विच सतगुरु जी कहिंदे ने कि गुरमुखां नूं सिमर सिमर के मालिक दा नाम सिमर के सुख आनंद प्राप्त हुंदा है। जिथे गुरमुख आप नाम जपते ने उथे होरनां नूं वी नाम जपन वाले पासे लाउंदे ने। तां सतगुरु जीव नूं समझाउंदे ने कि तेरे सारे दुखां दा नास हो जाएगा ज्यों ज्यों तूं मालिक दा नाम सिमरदियां जपदियां ये बरकतां हासिल करेगा, ओदे गुणां दे खजानियां नूं ध्याएगा, त्यों त्यों तू सुखां वाले पासे आ जाएगा। तां आओ गुरु प्यारियो, इस 5वें पदे दा आनंद माणदे आ कीर्तन रूप विच। आवाज है भाई साहिब भाई अमरीक सिंह जखमी दे जथे दी, ते शब्द जी टेक है साजन संत करो एकांत।

ईसानी मन इको सच्चा हुकम पशानी सहज संतोख सदा तृप्ता से आनंद खसम के पाणी जियो। रागमाज दी बाणी विचों धन गुरु अर्जन देव पातशाह दे ए पवित्र बोल कि प्रभु नूं मिलन दी निशानी की है। वैसे तां बहुत सारे जीव ए दावा करदे ने कि मैं रब नूं पा लिया है, मैं अकाल पुरख नूं पा लिया है, पर निशानी वेखो सच्चे पातशाह बख्शिश करदे ने मन इको सच्चा हुक्म पछाणे। जदों साडा मन एक मालक दे हुक्म विच जुड़ जावे, मैं वाली स्थिति खत्म हो जावे, तू तू करता तू हुआ, फिर ओदे मिलाप दी ए निशानी है कि ओदे वर्गे ही हो जाना। ते जदों ओदे वर्गे हो गए जिहड़ा मन है ए सहज विच संतोख विच तृप्त हो जांदा है, ते आनंद अवस्था जिहड़ी सब तों उत्तम अवस्था है जिहदा कोई होर तोड़ नहीं है, आनंद खसम के भाणे जियो, उस मालक दे भाणे विच जीव आनंदित रहिंदा है। फिर भावे तत्ती तवी ते बैठा होवे, फिर भावे आरे नाल चीरिया जा रहा होवे, भावे बंद बंद कटवा रहा होवे, ओहदे लई ए भी आनंद अवस्था है। ता आओ प्रभु नूं मिलन दा आपां वी हीला करिए, गुर शब्द राही उस मालक दी बंदगी विच जुड़ना करिए।

0: मैं की करना अज तो बाद मैं यह गल नोटिस करनी आ कि मेरी जिंदगी विच परमात्मा ने किन्नियां असीसां भरियां होईयां ने किन्ना कुछ मेरे जीवन विच शुकराने लिया कि मैं कंप्लेंट करा जां मैं शुकराना करा ते जिहड़ी मेरी अकल आ इहदे उत्ते कप्पा ने लिमिट लाउणी आ कि मेरी अकल दी लिमिट आ इक मेरी अकल दी हद बंदी आ इक पर जिथे जाके मेरी अकल खत्म हुंदी आ उतो बाद जिहड़ा परमात्मा ओ शुरू हुंदा आ उतो बाद गुरु दी मत शुरू हुंदी आ जिन्ना तक मेरी मत आ थोड़ी मत आ मेनू उस समर्थ दा पता नहीं लगना हैगा ते सिमरन सिमरन दा मतलब मैं वाहिगुरु जी अज दा दिहाड़ा मैं चूज करदा आ कि मैं अज दा दिन तेरे शुकराने विच कटना आ तेरे मैं सिमरन दे विच कटना आ मैं तेरे भाणे दे विच कटना आ सो तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने सानू बड़ा प्यारा संदेश दिता भी जेड़ा हुक्म साडे नाल लिखिया होया भाव के ओनू असी संगत जी कमाउणा आ जीवन दे विच कमाउणा आ कि मन दे उत्ते साडे कलेश ना रहे साडी जिंदगी विच स्यापे ना रहन असी जिंदगी नू खूबसूरती दे नाल एक दूजे दे नाल रल के मिल के सोहना बना के कटिए विचारां करदिआं बेअंत ही भुल्ला चुक्कां दी शमा वाहिगुरु जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਸਰਹਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਵੀ ਸਰਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
2: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਣੀ
3: ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ
2: हर शब्द देवे जदो जिंदगी नू आसरा फिर शुरुआत होवे सुहावनी रोजाना प्रोग्राम दलजीत सिंह होना दे नाल हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया दे संग।

रागमाज विचों पंचम पातशाह जी दे ए पवित्र बोल के जिस हिरदे विच जिस घर विच जिस स्थान ते प्रभु दा नाम जपया जांदा है उत्थे पावे रोड होन पावे मारू थल होवे ओ सोहणे चबारिया नालों भी सोहणा लगदा है भाव ओ महलां वर्गा आनंद देंदा है। ते दूसरा पासा देखिए तस्वीर दा जिथे प्रभु दे नाम तो बगैर नाम तो हीणे जीव वसते ने जिन्हां दे हिरदियां विच अकाल पुरख दा नाम नहीं है ओ उजड़े हुए शहर वांग लगदे ने रोड बन जांदे ने ना जिवें उवें ओ उजड़े हुए शहरां वांग लगदे ने। तां आओ गुरु प्यारिओ अपने हिरदियां नूं प्रभु दा नाम जप करके सोहणे महलां वांग बना लईए क्योंकि उस मालिक दा जिथे भी वासा होएगा ओ सोहणा लगेगा। आओ सरवण करदे हां एक पवित्र शब्द।

0: गुरु अंगद देव जी दी पत्नी माता खीवी जी लंगर चला रहे सन के कोई भी आया प्राणी पेटों भुखा ना जाए, जेड़ा आवे ओ तृप्त होके जावे। पिंडां विच रहण वाले गरीबां दे बच्चे जदों उन्हां नूं चंगी खुराक मिल गई तां ओ ताकतवर पहलवान बन गए। सतगुरु उन्हां दीआं कुश्तियां करवांदे सन ते बड़े शौक दे नाल आप देखदे हुंदे सन। विचार ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना, सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।
1: अन्न खाना कपड़ पहनन दिया, रस अन्न पुगानी, जिन दिए सो चित न आवई, पशु हों कर जानी। रागौड़ी विच धन गुरु रामदास महाराज जी, मनुख दी तुलना पशुआ नाल करदिया कहिंदे ने कि जिस अकाल पुरख ने खान नू अनाज दिता है, पहनन नू कपड़े दिते ने, होर दुनिया दे कई भोग रस दिते ने, पर ए मनुख उसे रब नू ही भुल बैठा है ते कहिंदा है ए ता सब मैं बनाए ने। सवाल है कि सूरज मनुख ने बनाया, जो चानण देंदा है, रोशनी देंदा है, धुप देंदा है, गर्मी देंदा है। कि धरती मनुख ने बनाई है, जिथों ये अनाज होर खनिज पदार्थ लभ रहा है। होर ता होर हवा ते पानी की मनुख ने बनाए ने, नहीं ना। वो बंदिया तेरे नालो ता पशु चंगे ने, जो थोड़े जे खाने जा प्यार दे बदले सारा दिन तेरे पिछे पूछ हलाउंदे फिरदे ने। होर ता होर पशु सुखी तूड़ी कड़ब खा के अमृत वर्गा दुध देंदे ने। पशु मिले चंग्याईयां खड़ खावे अमृत दे, नाम विहोने आदमी त्रिग जीवन कर्म करे। जब लग जोत काया में बरते, आपा पशु न बूझे, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कशु न सूझे। ओ भाई, जिन्ना चिर सवासां दी माला चलदी है ना, अपने तत नू क्यों भुल बैठा है। ओ भी मिल जाए, आ भी मिल जाए, इसे लालच विच ही तू अपनी जिंदगी गुजार दिती है। नरु मरे नर काम न आवे, पशु मरे दस काज सवारे। ओ वेखला बंदिया, तेरे नालों ता पशु चंगे ने, जिड़े मरण तो बाद भी अपने हड्डा अपनी चमड़ी अपनी मिज नाल साडे कई काम सवार देंदे ने। ते मनुख मनुख मरे ता सवरना ता की है, सगों होर खर्चे वध जांदे ने, कला कलेश वधा जांदा है। भगत कबीर जी ऐसे मनुख नूं तागीद करदे ने, दीन बसारियो रे दीवाने, दीन बसारियो रे, पेट भरियो पशुआ ज्यों सोयो, मनुख जन्म है हारियो, दीन बसारियो रे दीवाने। ता आओ गुरमुखो, राग मारू दे इस शब्द नूं कीर्तन रूप विच सरवण करदे हां। शब्द सरवण करा रहे ने भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले, ते उन्हां दा कीर्तनी जथा। आओ सरवण करिए, दीन बसारियो रे दीवाने, दीन बसारियो रे।

अस्थिर कर्माणि ते पाहुन दोदाहा। पुत्र कलत्र ग्रह सगल समग्री सब मिथ्या असनाहा। राग आसा विच्चों पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दे बोल कि हे मनुख, हे जीव, जिन्हां पदार्थां नूं पदार्थां विच साडा घर भी है, कार भी है, कारोबार भी है, नौकरी चाकरी भी है, साडे आल दुआले जुड़े जिया जंत भी हन, रिश्तेदार भैण भाई, पर ए सब कुछ कुछ पलां दे ने, कुछ पलां दा साथ है। सतगुरु कहिंदे सब मिथ्या असनाहा, ए जिन्नी भी समगरी है सब मिथ्या होया, साडा इन्हां नाल प्यार है। समा पा के हर एक चीज साडे तो विछड़ जाएगी, खोई जाएगी, खत्म हो जाएगी। सो नाल निभण वाली केड़ी चीज है? वो है अकाल पुरख दा नाम। जिन्हां ने अकाल पुरख दे नाम नाल जुड़ना कीता, उन्हां दा ही ए मनुखा जन्म सफला होया। ता आओ अपने इस मनुखा जन्म नूं सफला करिए, ते उस अकाल पुरख दे नाम विच जुड़न लई ए शब्द नूं सरवण करिए।

0: हुण तक तुसी सरवण कर रहे सी गुरबाणी कीर्तन दा प्रवाह। तुहाडा अज दा ए दिन सतगुरां दी बाणी दे आनंदमई बोलां दे नाल शुरू होया सी। ते वाहिगुरु अगे साडी बेनती जोदड़ी अरदास है कि सारे स्रोतियां दा अज दा ए भागां भरिया दिन मालक दी रजा विच खुशियां खेड़ियां दे नाल बतीत होवे। आओ सरबत दे भले दी अरदास करिए। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा पला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। आजो आजो ताया जी, वेलकम।
2: ताया अज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू।
1: ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथों किथों मिलू इंडिया आले गद्दे?
2: लो ताया, आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो।
1: पंजाबी फर्नीचर?
2: जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर। इथों मिलदा सारा इंडियन फर्नीचर, जो भी तुहानू चाहिदा सब इथों मिलू। मंजे, धार्मिक फोटोआं, चादरां, साइकिल, चुल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ इथों मिलू। ताया जी,
1: लाया ता तू मेरी टेंशन दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा। ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामण दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा।
2: लिखो फिर 2A 130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। अकाल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
3: रोटी हजम नहीं हुंदी, वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल्स दा गरेवाल चक्की आटा। ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी के सीधी खेतों चो मिल च लई जांदी। ऑस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डुआं लई स्पेशल बेसन, मल्टीग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो garewalgoldengrain.com.au या फोन करो 0428895564।
4: अपनी बिजनेस की तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दीआं सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस की एड देण लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
5: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो, 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो। हरमन रेडियो 24 घंटे
6: गुरबाणी साडे लई जीवन सेध है, धर्म दी बुनियाद है, जग चानण है, चुंबकी छोह है, आत्मक प्रकाश है, अमृत दा सोमा है, आत्मिक दात है, नाम है, इष्ट है, गुरु है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। गुरबाणी की पारस कला नूं सारे विश्व तक पहुंचाउण दा एक निक्का जिहा उपराला रोजाना शामी गुरबाणी विचार प्रोग्राम दे तहत तुहाडे अपने हरमन प्यारे रेडियो हरमन रेडियो ते।

खूबसूरत दिन की खूबसूरत शुरुआत, सूरज दी सुनहरी किरणा रुमक दी पौण, आसमानी चादर दे थले लहलहाउंदियां फसलां दे नाल लहरां लहरां तुहाडी सवेर नूं होर निखारन लई पेश है प्रोग्राम लहरां लहरां लहरां लहरां लहरां तुहाडे मन दे वलवलियां दियां लहरां तुहाडे वडमुल्ले विचारां दियां लहरां तुहाडे दिल दे जज्बातां दियां वखरा दिन वखरा दिन वखरी आवाज वखरी आवाज वखरी गिरां वखरी गिरां लहरां सोमवार तो शुक्रवार सिडनी आस्ट्रेलिया समय के मुताबिक सवेरे 8 बजे तो 10 बजे तक लहरां लहरां

साड़ी सवेर दी शुरुआत साड़ी अपनी खबर साड़ा पंजाबी होन दा संकल्प असी लोक असी समूह पंजाब पंजाबी पंजाबीयत खबर विरासत सभ्याचार सारे पुलानु जोड़दा एक समुंदर उसे समुंदर दियां लहरां रोजाना सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 8 बजे हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया दिल पंजाबी जज्बा पंजाबी।

0: सुनावा खान सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा एक दर बंद सौ दर खुले।
1: इस दा मतलब है कि रोजगार दे हजारां साधन हन, घबराना नहीं चाहिदा।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले पंजाबी बोले हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया।
2: सुनो भी दोस्तों भावे बैठे हुए हो जा खड़े हुए हो, घर वाली नाल रसे हुए हो या फिर बापू नाल लड़े हुए हो, काम ते जा रहे हो या फिर काम तो घर वापस आ रहे हो, ओ भाई नहा रहे हो के कुछ खा रहे हो या फिर घर विच रौला रप्पा पा रहे ने न्याणे, ओ भाई दुखी ना होवो, सब गल्लां छड्डो आ सुनो हरमन रेडियो तो गाने। तुसी दोस्तों चाहे पिंडा विच बसदे हो जां फिर बसदे हो पिछे शहरां शहरां, हरमन रेडियो सदा मंगदा तुहाडियां खैरां खैरां। ते लो जी हाजरां लैके प्रोग्राम लहरां लहरां लहरां। आस्ट्रेलिया दे सिडनी स्टूडियो तो सोमवार तो शुक्रवार तक सवेरे 8 बजे तो लैके 10 बजे तक।

की करते हुए स्वेत दी ताजगी सन ताजा खबर महत्वपूर्ण जानकारियां मनमोहक संगीत सेहत संबंधी सिलसिले मुलाकातों का दौर अति सरगोशियां मालवंतो माणो मेरे नाल यानी अमरदीप कौर नाल हरमन रेडियो दे प्रोग्राम लहरां दे विच सवेरे 8 बजे तो 10 बजे तक।

0: हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया तुहाडे अंग संग।
1: मेरा ये शरीर अते इस दे सारे अंदरूनी बाहरी अंग मेरे अवचेतन मन विचली अनंत सियाणप ने ही बनाए हन। यही जानती है कि मैनू ठीक किवें करना है। इसे सियाणप ने ही मेरे सारे अंगा मेरे शरीर दियां मांसपेशियां हड्डियां अते सारे सैलां नूं डिजाइन किया है। ए अनंत हीलिंग शक्ति जो कि मेरे अंदर हाजिर है हुण मेरे शरीर दे हर सैल नूं रूपांतरित कर रही है अते मैनूं संपूर्ण बना रही है। मैं इस इलाज लई इसका धन्नवादी हाँ। मैं जानता हाँ कि इस समय ये मेरे अंदर चल रही है। मेरे अंदर दी इस उसारू सियाणप दा काम हैरानीजनक है। ये लगातार मेरे शरीर दे बीमार सैलां नूं खत्म करके उन्हां दी जगह तंदरुस्त अते नरोए सैलां दा निर्माण कर रही है। मैं बिल्कुल तंदरुस्त हाँ। इस तंदरुस्ती लई मैं इस कुदरत दा परमात्मा दा ते अपने अंदर चल रही इस अनंत शक्ति दा दिलों धन्नवादी हां।

0: नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ, इथों कित्थों मिलू इंडिया आले गद्दे। लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तों। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर इथों मिलदा, सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब इथों मिलू। मंजे, धार्मिक फोटवां, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ इथों मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती, नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामण दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
1: रोटी हजम नहीं होंदी, वरतों गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिलदा गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी कि सीधी खेतां चो मिल च लई जांदी, आस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डुआं लई स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो garewalgoldengrain.com.au या फोन करो 0428895564।
2: अपनी बिजनेस की तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस की एड देण लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजिंग सैक्शन च विजिट करो।
3: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो, 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो। हरमन रेडियो, हर्मन रेडियो।

ऑनलाइन सेल्स कंपनी स्नैपडील दी स्थापना रोहित पांसल ने अपने दोस्त कुनाल पहल नाल मिलके कीती। स्नैपडील फ्लिपकार्ट तो बाद दूसरी सब तो वड्डी शुद्ध भारतीय मूल दी ऑनलाइन सेल्स कंपनी है। कंपनी दा टर्नओवर तकरीबन 3000 करोड़ दा है। इस दी सालाना विक्री $30 करोड़ तो वध है। एक कंपनी भारत दे 5000 शहरां अते पिंडां विच 1 करोड़ वक वक किस्म दा समान काका दे घर तक पहुंचा रही है। अजिहियां होर वडमुलियां जानकारियां दे लई बने रहो हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया दे नाल। दिल पंजाबी, जज्बा पंजाबी।

नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब ते एक बार फिर तो हार्दिक स्वागत है तुहाडा अपने तुहाडे अपने रेडियो चैनल दे हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया दे। ते मैं प्रनीत कौर तुहाडे नाल इस टाइम जुड़ी हाँ मेलबर्न दे बहुत ही खूबसूरत इलाके गिप्सलैंड तो। ते तुसी मैनू सुन रहे हो देश विदेश विच इस टाइम लाइव, ते साडा लाइव इस टाइम फेसबुक दे पेज ते तुसी मैनू सुन सकदे हो, यूट्यूब राही सुन सकदे हो ते साडी ऐप दे राही। ते अज दा प्रोग्राम बहुत ही वखरा है। ते अज दे प्रोग्राम दे विच मेरे नाल अज गेस्ट भी शामिल होणगे। ते एक गेस्ट साडे पाकिस्तान तो शामिल होना सी, बट एक बजे दे हिसाब नाल पाकिस्तान दे टाइम तो उन्हां दा मैनू मैसेज आया कि वो अज शामिल नहीं हो सकते, लेकिन ऐतवार नूं वो मेरे नाल शामिल होणगे। बट इस टाइम एक होर गेस्ट साडे नाल हैगे ने, ते आपां उन्हां दे नाल जिवें प्रोग्राम दे मध्या दे विच पहुंचांगे ते एक वखरे टॉपिक दे उत्ते गल करांगे। ते अज दा जिहड़ा टॉपिक मैं लिया, ते पहले सैशन दी मैं शुरुआत हिंदी दे प्रोग्राम दे विच हिंदी दे विच भाषा दे विच करांगी, ते उस तो बाद मेरे नाल जिहड़े गेस्ट जुड़नगे मध्या इस प्रोग्राम दे दौरान, उस दौरान आपां पंजाबी दे विच गल करांगे। ते बड़ी उगी शख्सियत ने ते रंधावा साहब साडे नाल ऐड होणगे 9:30 बजे। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜੁੜਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਫੇਥ ਭਾਵਨਾ ਬਿਲੀਵ ਟਰੱਸਟ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮੱਧਿਆ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਪਿਓਰਿਟੀ ਇਨ ਫੇਥ ਸਲੈਸ਼ ਸ਼ਰਧਾ, ਹਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਫੇਥ ਬਿਲੀਵ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਓਟ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। अगर इस टाइम देखा जाए सिडनी में, सिडनी का जो तापमान है वो 21.0°C 21.0°C महसूस किया जा रहा है। देखो मैं सारिया भाषावां मिक्स कर देनिया ने अज, क्योंकि डिमांड इस तरह की मैनू आंदी है तो फिर मैनू उसके हिसाब दे नाल चलना पैंदा है। तो जो मौसम है इस टाइम सिडनी का वो 21.0°C महसूस हो रहा है। तो ये महसूस था जैसे बादल अंदर और बाहर, वो महसूस हम बादलों की तरह, कभी बादल बरसात बरसाने के लिए तैयार होते हैं और कभी बादल वहां पे ठहर के वो काली घटा वहां पे सारा काला कर देते हैं, और वही वो कालापन इन टर्म्स ऑफ प्योर इम्प्योरिटी, वो कालापन जब हमारे अंदर वो भाव बन के वो उड़ने की बजाय वो वर्षा अंदर होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम होता क्या है? उस टाइम हम सोच नहीं पाते करें क्या, करना कुछ और चाहते थे, करना कुछ और स्टार्ट कर देते हैं,
और यही कारण है कि जो हमारे सामने समस्या, एक प्रॉब्लम आती है, तो हम वहां पे एक स्टेबल स्थिति में स्थित क्यों नहीं रह पाते? वो श्रद्धा, वो फेथ, वो बिलीफ हमारे अंदर क्यों नहीं आ पाता? वो काली घटा, वो इम्प्योरिटी की काली घटा हमारे अंदर क्यों वर्खा करनी स्टार्ट कर देती है? तो इसी चीज को कि वो काली घटा अंदर ना आए, वो वर्खा जो अंदर फिर हिलाती है सारा हमारा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हम पूरे हिल जाते हैं। और वो सिचुएशन, वो सरकमटांसेस, वो कोई एक व्यक्ति मेरे सामने जब आता है, जब मैं ही हिल गई तो मैं दूसरे को क्या संभालूंगी? तो ये चीज, ये समस्या हमारे दौरान सामने देखने में आती है। तो इसको हमने बैलेंस कैसे करना है, वो प्योरिटी अंदर कैसे लेके आनी है, इस विचार के ऊपर आज हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि पहला भाग हिंदी में डिमांड आई है, तो हिंदी में जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो पंजाबी में होगा। तो होता क्या है फिर, वो मेलबर्न की तरह 17.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम तो हुआ लेकिन वर्षा तो हो गई शुरू। और वो वर्षा ऐसी हुई कि कैनबरा की तरह वो काली घटा और वर्षा लगातार होती रहती है। और जब वो लगातार होती रहती है तो तापमान तो घटा, कुछ तो ठंडा हुआ कि मैं ठंडापन महसूस करूं, उस सोच को बदलूं। तो एडिलेड की तरह वो तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही वो डार्विन जैसे हमेशा गर्म रहता है, तो डार्विन जो इस टाइम वो तापमान दिखा रहा है वो 34.1 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। वहां पे हमेशा बादल और वो घटा हमेशा छाई रहती है। कभी सूरज, कहते हैं कि वो बादलों के पीछे लुक्का छिपी, ऐसे ही वो हमारे विचार कभी नेगेटिव कभी वेस्ट हमें एक दुविधा में डाल देते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर वो एक ट्रस्ट, एक फेथ उजागर होता है, तो वो एक जो रोशनी, वो परमात्मा, वो निराकार, वो ईश्वर, वो प्रभु, वो गॉड हमें जब एक रास्ता दिखाता है, तो हमारे अंदर और वो बाहर वो रोशनी स्टार्ट हो जाती है। वो रोशनी जो हमें हमेशा हमारा साथ देती है, वो रोशनी, वो परमात्मा का हाथ जो हमें मुश्किलों के समय ही नहीं, हमारे सुख और दुख में हमेशा हमारे साथ होता है। वो परमात्मा का साथ जो हमें जिंदगी जीना सिखाता है। तो अगर मैं बात करूं ये श्रद्धा वर्ड की, श्रद्धा एक वर्ड ही नहीं है, श्रद्धा एक वो फीलिंग है, वो भाव है जो हमें जब हम मुश्किल में होते हैं तब भी उठाता है, जब हम खुशी में होते हैं तब हमारी वो खुशी को कन्वर्ट करता है आनंद में। वो आनंद जो अंदर और बाहर हमें उस कंटेंटमेंट, वो सेटिस्फेक्शन के रूप में महसूस होता है, वो कंप्लीटनेस हमारे अंदर जब आती है, तब हमें वो परमानेंट आनंद और वो खुशी महसूस होती है। लेकिन होता क्या है, हम एक इल्यूजन, एक ड्रामा में एक पार्ट बजा रहे हैं, और उसमें पार्ट बजाते बजाते हम एक सेवा भाव से एक सेवा भी करते हैं कि मैं आपसे जुड़ा हुआ परमात्मा ये कार्य कर रहा हूं। क्यों ना ऐसा हो जाए कि जो भी हम इन फ्यूचर और जो अब और प्रेजेंट और पास्ट में कर चुके हैं, उस चीज को हम श्रद्धा के रूप से ही करना स्टार्ट कर दें, उस फीलिंग को ऐसे लेके आए कि वो कंप्लीट श्रद्धा हो। लेकिन ये हमें जानकारी नहीं है कि वो श्रद्धा वर्ड वर्ड नहीं है, वो श्रद्धा भाव है। और जब वो भाव की समझ नहीं होगी,
तो चाहे मैं सेवा करूं, चाहे मैं नॉर्मल काम करूं, चाहे मैं दफ्तर में बैठी काम करूं, चाहे मैं इस टाइम आपके सामने हूं, अगर मेरे अंदर वो श्रद्धा नहीं होगी तो जो भी मैं कार्य कर रही हूं उसमें असफलता का सामना करना पड़ेगा। और बाहर के जो अभी हम इस टाइम

पवित्रता है तो दूर भाग जाओ, ये होता है, रियलिटी है। क्योंकि हम इल्यूजन में इतना अंदर जा चुके हैं कि पवित्रता को, पवित्रता के शब्द कोई, नाम कोई सुन के दूर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये पवित्रता केवल शरीर की पवित्रता नहीं, ये पवित्रता मन की पवित्रता है, जहां पे हमारे वो थॉट्स, हमारे भाव, वो फीलिंग्स स्टार्ट होती है। तो इसको पवित्र करना क्यों जरूरी है? और जब हम वो श्रद्धा, वो भाव, वो ट्रस्ट, वो फेथ, चाहे हम किसी सेवा करते टाइम रखें, चाहे जब हम अपना कार्य करते हैं, कोई भी नॉर्मल काम है, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे कहीं पे भी हो, उस कार्य को जब आप उस श्रद्धा के रूप में करोगे ना, उसमें सफलता आपकी 100% है। लेकिन वो तब आएगी जब आपका मन शुद्ध है, वो श्रद्धा शुद्ध। अब शुद्ध वर्ड है ना, श्रद्धा वर्ड कहां से आया? अगर श्रद्धा वर्ड को समझने की हम कोशिश करें, ठीक है, श्रद्धा शर्द, शर्त, शर्त मीन्स हार्ट, मेरा दिल है ना, शर्त दा, ये दा मतलब धा, इसका मतलब है कि मेरा मन। जब मन और दिल है ना, मन जहां पे हमारे भाव, वो थॉट इनिशिएट होते हैं, जहां पे मेरा विचार इनिशिएट होता है, अगर वो मन और मेरा है ना, मन और मेरा वो जो भाव है, दोनों इकट्ठे हो गए, अंदर और बाहर मेरा इकट्ठा हो गया, तो उसके बाद मेरे विचार और जो मैं हूं असल में अंदर, दोनों चीजें मेरी सेम है, ठीक है। जब वहां पे मेरा थॉट सेम, सोच भी मैं वैसे रही हूं, कर भी वैसे रही हूं, ठीक है, जिसमें मेरा मन और मेरा ध्यान दोनों चीजें, मेरा मन और मेरा ध्यान दोनों चीजें इकट्ठी हैं, वो जो चीज होगी उसमें इम्प्योरिटी नहीं होगी। जहां पे दो थॉट्स इकट्ठे मिक्सचर हो गए, वहां पे वो मिक्सचरिटी, वो इम्प्योरिटी आ गई। कहते हैं ना कि अंदर से कुछ और है तो बाहर से कुछ और है, जब वो अंदर और बाहर सेम होगा, तब जो उस कार्य में हम काम करेंगे, अंदर हम कह रहे हैं कि ये बॉस ऐसा है, बाहर हम कह रहे हैं यस यस आई एम विद यू, तो उस टाइम हमें उस अपने जो सिंपल एक काम है ऑफिस का, उसमें भी सफलता महसूस नहीं होती। तो ये कारण है कि जब हम एक कार्य, सिंपल कार्य भी करते हैं ना, तो वहां पे हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ये चीजें, इस चीज को समझने के लिए हमें वो प्योरिटी, अपनी ईगो, आई को मारना बहुत जरूरी है ना। बाहर कह रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, मैं सेवा कर रहा हूं, ठीक है, और मैं, अगर मैं सेवा कर रहा हूं, अगर सेवा मेरी चल रही है, तो सेवा में, सेवा में किसी का ऊपर नीचे नहीं देखा जाएगा, किसी को नीचे ऊपर खींचने की कोशिश नहीं की जाएगी। तो ये चीज बहुत जरूरी है। अगर मैं गुरबानी की बात करूं, इकट्ठे मिलकर करते हैं, हिंदी में बात कर रही हूं जैसे कि डिमांड आई, लेकिन मैं गुरबानी को लेके साथ ये चीज को एक्सप्लेन करना चाहती हूं। गुरबानी में कहा जाता है, जिन श्रद्धा राम नाम लागी, तिन दूजे चित ना लाए राम, दोज हु डिवेल्प ए फर्म फेथ इन गॉड्स नेम डू नॉट अटैच देयर कॉन्शियस टू समवन एल्स। जब हम कोई भी सेवा करते हैं, जब परमात्मा को याद करते हैं, तो उस टाइम सिर्फ एक की तरफ, सिर्फ एक की तरफ जब मेरा, वो मेरा मन और मेरी बुद्धि इकट्ठी उस परमात्मा से जुड़ी होगी, ठीक है, और एक पे वो मेरा विश्वास होगा, तब पंजाबी में वो लिखा है नीचे, जिन्हां मनुखा ने परमात्मा का नाम सिमरन विच निश्चय पक्का कर लिया, वो हर नाम का प्यार, हर नाम का प्यार छड़ के किसी होर प्रथा पदार्थ वाल अपना चित नहीं जोड़ दे। सो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज कि आप का मन जो है, ठीक है, अगर आप सेवा भी कर रहे हो, चाहे गुरुद्वारा साहब में, चाहे मंदिर में, चाहे कहीं पे भी, जिस टाइप की आप सेवा कर रहे हो, चाहे आप एक ऑफिस में बैठे काम